ये लोग अल्लाह के सिवा जो परस्तिश करते हैं तो कुछ देवियों की, और पुकारते भी हैं तो शैतान सरकश ही को, जिस पर अल्लाह ने लानत की है। और वो अल्लाह से कहने लगा, मैं तेरे बंदों से गैरुल्लाह की नियाज दिलवा कर माल का एक मुकर्रर हिस्सा ले लिया करूंगा, और उनको गुमराह करता और उन्हें उम्मीदें दिलाता रहूंगा, और ये सिखाता रहूंगा कि जानवरों के कान चीरते रहें, और उन्हें समझाता रहूंगा, तो वो अल्लाह की बनाई हुई सूरतों को बिगाड़ते रहेंगे। और जिस शख्स ने अल्लाह को छोड़कर शैतान को दोस्त बनाया वो साफ साफ घाटे में रहा। वो उनको वादे देता है और उम्मीदें दिलाता है, और जो कुछ शैतान उन्हें वादे देता है वो धोखा ही धोखा है। ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है, और वो वहां से कोई राह फिरार नहीं पा सकेंगे। और जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनको हम बहिश्तों में दाखिल करेंगे, जिनके नीचे नहरें जारी हैं, वो हमेशा हमेशा उनमें रहेंगे। ये अल्लाह का सच्चा वादा है, और अल्लाह से ज्यादा बात का सच्चा कौन हो सकता है।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अपना शहर, अपना घर, मटियारी की आवाज,
1: GFM

केटीएन न्यूज खानपुर महर जे रिपोर्ट बाजियाबी लाए कलमदन जो चवण आए तो जुल्म खिलाफ आवाज उथारण ते सहाफिन के सजा डिनी पई वे अजीम सियाल के फौरी तौर ते बाजियाब कराए वे IMF जो मिशन जरियन मां मुतमैन IMF के सऊदी अरब जे डिपॉजिट बाबत में ब्रीफिंग डिनी वई।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खिते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 11:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ni laya. Pakila Sharia compliant gold based financing.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: बैंक इस्लाम नी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
4: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज़
5: GFM 91.6।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: It's 12 PM. This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे GFM Network पर KTN News.

IMF ऐं पाकिस्तान विच में अॼु IMF मछी नाणे वारी वज़ारत सां ॻाल्हियूं कंदो। IMF मिशन जूं चइनी सूबनि जे नाणे वारे खातनि जे ॻाल्हियूं थींदियूं, ज़रियनि वधाइण ते ॻाल्हियूं थींदियूं। IMF जो मिशन स्टेट बैंक जे ज़रियनि मां मुतमैन आहे। IMF खे सऊदी अरब जे डिपॉज़िट बाबति बि ब्रीफिंग ॾिनी वई आहे। सिंध पुलिस धाड़ेल नाडो बेवस बणियल गुज़िरियल ॾींहं खां अॻवा थियल KTN न्यूज़ खानपुर महर जो रिपोर्टर अज़ीम सियाल अञा बाज़ियाब न थियो। IG सिंध ऐं घरू वज़ीर सिर्फ़ नोटिस वठी वेही रहिया। हुकूमत भुंग बाबति मुगवी सहाफ़ीअ जे वारसनि सां राब्तो न कयो। धाड़ेलनि गुज़िरियल ॾींहुं अज़ीम सियाल जे वारसनि खे फोन करे 1 करोड़ भुंग घुरियो। संदसि वारसनि जो चवणु आहे त 1 करोड़ भुंग किथां आणींदासीं। कलम धणनि जो चवणु आहे त कलम धणनि जे अॻुवा जा वाकिया ॻणितीअ जोॻा आहिनि। सिंध हुकूमत हुन जो जवाब ॾे। KTN न्यूज़ खानपुर महर जे रिपोर्टर अज़ीम सियाल जे बाज़ियाबी लाइ कलम धणी सरापा एहतजाज। मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा ऐं धरणा चक, बख्शापुर ऐं भान सैदाबाद में एहतजाजी मुज़ाहिरा कया विया। कलम धणनि जो चवणु आहे त ज़ुल्म ख़िलाफ़ आवाज़ उथारण ते सहाफ़ियुनि खे सज़ा ॾिनी पई वञे। अज़ीम सियाल खे बाज़ियाब करायो वञे। अमरीका जंग खटी चुको आहे पर कारवाइयूं मुकमल तौर ख़तम न थियूं आहिनि। अमरीकी सदर फॉक्स न्यूज़ खे इंटरव्यू ॾींदे चयो आहे त मिट्रम चूंडुनि खां अॻु ईरान ते हमिलो करे सघां थो। ईरान ख़िलाफ़ जंग जल्द ख़तम थियण जी उमेद आहे। असांजो बुनियादी मक़सदु ईरान खे जोहरी हथियार ठाहिण खां रोकणु आहे। ईरान ख़िलाफ़ फ़ौजी ऐं मुआशी सतह ते कामयाबियूं मिली रहियूं आहिनि। ईरान अमरीका सां ॿीहर जंग करण लाइ बि तयार आहे। सफारतकारी ॾांहुं वापसि अचण लाइ को बि जवाज़ु न आहे। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराची चयो आहे त तहरान जंग जो ख़ात्मो चाहे थो। आबनार्म्स खोलण लाइ बि तयार आहियूं। अमरीका जंग ख़तम करे असांजा मंझंदि असासा बहाल करे ऐं पेट्रोल विकिरो करण तां पाबंदियूं हटाई वञनि। बलोचिस्तान में मज़दूरी लाइ वियल मुरीद शाख वासी

पोरे त अगवा अगवा थियल पोरे तो तालक मुरीद शाख जे गोठ मिठल डर सा है। वारसन मूजिब पोरेत बच्चन जो पेट पालन लाए बलोचिस्तान में मजदूरी करण वया हुआ। मजदूरन के बाजियाब कराए वे अगवा थियल में सिकंदर नौमान शमन नईम समीउ खान आफ्ताब बासित इंशाद अहमद डारा शामिल आया।

0: मीर रज़ा केस में वॾे वज़ीर अदालती कमीशन जे मुदे में वाद वारी समरी मंज़ूर करे वरिती। ज़रियनि मूजिबि वॾे वज़ीर समरी मंज़ूर करे वरिती आहे, पर सिंध काबीना खां बि मंज़ूरी वरिती वेंदी। मीर रज़ा केस जी जांच कंदड़ अदालती कमीशन जो मुदो गुज़िरियल ॾींहुं पूरो थी वियो। मीरपुर माथलो में पुलिस हिरासत मां जवाबदार फरार थियण ते टे पुलिस अहलकार गिरफ़्तार। पुलिस अहलकार इम्तियाज़ कलवर, एजाज़ गडाणी ऐं अल्ताफ शाह खे गिरफ़्तार कयो वियो। एसएसपी घोटकी अनवर खेतरान टिनी पुलिस अहलकारनि खे क्वार्टर घाट कयो। पुलिस मुक़ाबले केस में गिरफ़्तार फारूक बोज़दार पुलिस मोबाइल मां फरार थी वियो। मेयाड़ में नौजवान जे कातिलनि जे गिरफ़्तारी लाइ पार वारसनि जो पाक किताब खणी प्यादल मार्च। मक़तूल सजा चांडे जे वारसनि 3 किलोमीटर प्यादल मार्च करे प्रेस क्लब अॻियां एहतजाज कयो। वारसनि जो चवण आहे त पुलिस क़तल केस दाख़िल कराइण बावजूद जवाबदारनि खे गिरफ़्तार न आहे करे सघी। सांगड़ में कतल थियल नौजवान जे कातिलनि जे गिरफ़्तारी लाइ एहतजाज। वारसन ऐं ॻोठाणनि हसनवाज़ पठाण जे कातिलनि जे गिरफ़्तारी लाइ चमड़ा रोड बंदि करे एहतजाज कयो। वारसन जो चवण आहे त मंगली पुलिस नौजवान जे कातिलनि जे गिरफ़्तारी लाइ का बि कार्रवाई न कई आहे, जवाबदार गिरफ़्तार कया वञनि।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 6 जो आवाज।
1: ओ मुजा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by
3: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aisi diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
4: Khoobsurti ka asal raaz sirf Deep Skin Beauty Cream. Isme maujood vitamin E beads aur jadeed microbeads formula aapki jild ko banaye

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN News।

सिंध पुलिस धाड़ेल आडो बेवस बणियल गुजरियल डीं केटीए न्यूज खां रिपोर्ट अञा ताईं बाज़याब न थियो। आईजी सिंध ऐं घरू वज़ीर सिर्फ़ नोटिस वठी वेही रहिया। हुकूमत भुंग बाबति वे मुगवी साहफ़ीअ जे वारसनि सां राब्तो न कयो। धाड़ेलनि गुज़िरियल अज़ीम सियाल जे वारसनि खे फोन करे 1 करोड़ भुंग घुरियो। संदसि वारसनि जो चवण आहे त किरोड़ भुंग किथां आणींदासीं। कलम धणनि जो चवण आहे त कलम धणनि जे अॻुवा जा वाकिया गणतीअ जोॻा आहिनि। सिंध हुकूमत हुन जो जवाब ॾे। न्यूज खानपुर मार जे रिपोर्टर अज़ीम सियाल जे बाज़ियाबी लाइ कलम धणी सराफ़िरो फिरोज़ ऐं जरवार खेरपुर दोदापुर कुंभ दड़ो ऐं तलार में बि कलम धणनि जो एहतजाज। सखर में बि वकीलनि एहतजाज करे।

0: आपन के सजा डिनी पई वे अजीम सियाल के फौरी तौर से बाजियाब कराए वे। अमरीकी सदर ईरान सा इन हफ्ते गालियों थियण जो इम्कान जाहिर कर छो। डोनल्ड ट्रंप जो चवण है तो उम्मीद है तो अमरीका तरफा गालियों कंदड़ हलंदड़ हफ्ते ईरान सा गालियों कंदा। अमरीका जंग खटी चुको है पर कार्रवाई मुकमल तौर से खत्म न थी आन। मिड टर्म चूंडन का अग ईरान ते हमलो कर सका तो ईरान खिलाफ जंग जल्द खत्म थियण की उम्मीद है। असाजो बुनियादी मकसद ईरान के जोहरी हथियार ठाण का रोकना है। ईरान खिलाफ फौजी ए मुआशी सतह से कामयाबी मिली रही है।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: खुशखबरी हाँ अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे। जेकरे तव्हां कंहिं भी बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताई सुबह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाए राब्तो करियो 0306-244-7700।
4: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, बुधंदा रहो।

दर्द एक अड़ी दवा जेका सूर खा दे निजात। सूर चाहे जोड़न जो हुजे, पठन जो हुजे, तेल जो हुजे या घिंटिया जो, कुन रग जो हुजे या वरी

तुम्हारी उम्मीद माजिजों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद माजिजों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। सिंह दंदर तमाम खूबसूरत नासू मही सोने समातन को मेरे तरफा अस्सलाम वालेकुम। दो के समान दर जाते की बारिश लाजुल खजानों के साथ दुआ है पल से पल तक आसे कल तक सुबह से शाम तक दिन नहीं से चाहते नहीं से आसमात जिंदगी से मौत चांद से तरदम से खुशी तक दिन सिलसिल दबा जिंदगी के पहले दिन जिंदगी के आखिरी दिन अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साय में सलामत रखे तो आमीन या रब्बुल आलमीन। जी आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क जहाँ पर हमारे सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मैरापुर मतली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं वाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल सुनाब स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताएंगे ताकि आप लोगों को पता चल सके जनाब कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों की खूबसूरती के लिए क्यों और कैसे जरूरी है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जो इस्तेमाल होगा ना आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करने वाला है। और इसी के साथ साथ अगर आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे साथ जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि भाई जान ये जो इतने प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद है ये भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ बहुत ज्यादा वाली मजीद बातें हैं जो कि आप लोगों के साथ प्रोग्राम के अंदर शेयर की जाती है। प्रोग्राम में आप लोगों के लिए फन होगा, एंटरटेनमेंट होगी, आप लोगों के साथ गाने होंगे जनाब मजी मजे के, और इसी के साथ साथ आप लोगों के साथ की जाएंगी बातें जो कि आप लोगों के लिए ही होने वाली है, आप लोगों के साथ ही होने वाली है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को हम बताते हैं तो वो इसलिए बताते हैं क्योंकि भाई बहुत सारे अगर आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर चुके हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल करके देखे होंगे, लेकिन जब हम यहाँ पर आप लोगों के लिए एक अच्छा और एक प्यारा ऐसा प्रोडक्ट लेकर आए हैं तो उसकी क्या क्वालिटीज हैं और क्या आप इस्तेमाल करने के बाद किस तरह से अपनी खूबसूरती में इजाफा लाने वाले हैं ये आप लोगों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है वाकई जो बताना चाहिए भाई बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। और अगर आप भी अपनी स्किन से लेकर थोड़ा सा परेशान है, स्किन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों के चेहरे पर आ चुकी है तो उन तमाम चीजों को कंट्रोल में रखने के लिए और अपनी खूबसूरती को जरा बढ़ाने के लिए डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल जो होगा वो क्यों जरूरी है ये चीज बताना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो प्रोग्राम में आपका हमारा साथ जो है ना वो बहुत ज्यादा मजेदार रहने वाला है और आपका हमारा साथ होगा जनाब पूरी पूरे तीन बजे तक। तो पूरे तीन बजे तक मैं आपको लोगों के साथ मौजूद रहने वाली हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि आप भी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। तो तमाम तो सुनने वाली समातों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया और इसी के साथ साथ अपना भी तारीफ करवाते हैं। सो लिसनर्स मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर यू आर जे एंड यू डीजे सदरा मुस्कान नाम तो सुनाई होगा। तो बिल्कुल आपके सदराव के साथ मौजूद है जनाब इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। चलिए जी रेडी शेडी हो जाइए हमारे साथ प्रोग्राम में फन करने के लिए, प्रोग्राम में बातें करने के लिए और प्रोग्राम में डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के लिए। और साथ ही साथ अपने हाल चाल बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स अब के हालत कैसे ही आपकी हालत उम्मीद एंड शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबकुल मोर के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है और फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मार ली। आपको पता ना जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ पूरे दो घंटों का। और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए आके फ्री होकर हमारा इंतजार कर रही थी। ऐसी बहुत सारी आंटियां अम्मियां खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान ये आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्त से गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला बिकॉज आली रे आली सदर आली बोस आपके होंठों पर 400 चाहते हैं। और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं, आगे से प्रोग्राम करते हैं जनाब एक बहुत ही ब्यूटीफुल से कलाम के साथ। तो बहुत प्यारा सा कलाम यहाँ पर प्रोग्राम की स्टार्टिंग सुन लेते हैं उस पास मुखातिब होते हैं। तो जनाब बताते हैं ये प्रोग्राम में क्या होने वाला है। ओके सो साथ रहिए और साथ दीजिए पूरी पूरी तीन बजे तक आप सुन रहे हैं वाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाइए और खूबसूरत हो जाइए।

खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीज और जदीद माइक्रो बीज फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

ये क्या बात है आप सुन रहे हैं व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के टावल से और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों के साथ बातें की जाती हैं और आप लोगों को बताया जाता है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में कि भाई डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोग क्यों इस्तेमाल करने वाले हैं और कितनी सारी आपको खूबसूरती मिलने वाली है जब आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करेंगे। तो इसी के साथ साथ अगर आप मर्द हजारे खवातीन सारे लोग अगर हमारे साथ मौजूद है तो तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं और सारे लोगों के लिए ही जनाब डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बताते हैं तफसीलन बताते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग अगर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं शाम में प्रोग्राम होना चाहते हैं तो होने वाला है प्रोसेस वो। इसी के साथ साथ अगर आज की बात की जाए तो आज के प्रोग्राम का टॉपिक क्या होने वाला

0: है वो भी आप लोगों को बताते हैं। ओके जनाब, तो आज के प्रोग्राम का जो सवाल होने वाला है वो कुछ इस तरह से होने वाला है कि आपने मुझे बताना है कि दुनिया का पहला मोबाइल फोन किस कंपनी ने बनाया था। हाँ जी बिल्कुल, आप मुझे बताएं दुनिया का पहला फोन जो था वो किस कंपनी ने बनाया था। मोबाइल के बारे में बताना है, फोन के बारे में नहीं। ठीक है, तो दुनिया का पहला जो मोबाइल फोन था वो किस कंपनी ने बनाया था। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं, फेसबुक पर ज्वाइन करने वाले हैं, तो जीए लाड़काना FM 88.8 आपने सर्च कर देना है। ठीक है, जीए लाड़काना FM 88.8 अगर आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है। वहां पर आइए, आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाएगी, जैसे आप लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए और मुझे बताइए हमारे साथ मौजूद है और आप ही प्रोग्राम का हिस्सा है। बिल्कुल जनाब, प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और मुझे बताइए जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आपने क्या सोचा है, इस्तेमाल कर रहे हैं या खाली प्रोग्राम सुनने वाली समाते हैं। तो भाई खाली प्रोग्राम सुनने वाली समाते मत बनिए और जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने वाले भी बनिए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जब आप इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप लोगों को इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि भाई ये जो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताया जाता है ना, ये बड़ी कमाल की प्रोडक्ट्स है। आप लोगों ने बेशक बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगाकर देखे, लेकिन जब आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप लोगों को पता चलेगा कि भाई डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों को मैं इतना क्यों बताती हूँ इनके बारे में, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है ना वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त और बहुत ही कमाल के प्रोडक्ट्स है जनाब, जिसमें आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है और उसके साथ डी स्किन का फेस वॉश मिल रहा है। ये डी स्किन के दो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश मिल रहा है। और जनाब ये क्या ही कमाल का इसका फार्मूला है, क्या ही कमाल तरीके से इसको तैयार किया गया है। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जो बातें पूरे प्रोग्राम में आप लोगों को बताऊंगी वो जरा गौर से सुनिएगा और जरा शोर से भी सुनिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल क्यों करने वाले हैं। अगर आपकी स्किन थोड़ी सी इस तरह की हो चुकी है कि भैया आप कोई भी प्रोडक्ट लगाने से थोड़ा सा घबरा चुके हैं, या फिर आपकी स्किन सेंसिटिव है, कॉम्बिनेशन टाइप है, आपको थोड़ा ऐसा लगता है कि भाई हम कोई प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि हमारी स्किन खराब हो जाती है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी भाई, वटा गोश नहीं है खाना, छोटी नो ना नहीं कहनी, बस आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर लेना है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल के फौरन बाद ही आप लोगों को जो कमाल के रिजल्ट मिलने वाले हैं वो बस देखने काबिल होते हैं। तो चाहे आप मर्द हजरात हैं, चाहे आप खवातीन हैं, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, दिल खोल कर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल करा सकते हैं। और क्या होगा जनाब ये प्रोसेस के किस तरह से आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराने वाले हैं, तो आपको पूरे प्रोग्राम में बिल्कुल जी नंबर्स बताए जाएंगे और नंबर्स के ऊपर आपने रابطہ करना होता है, कॉल करेंगे या फिर मैसेज करेंगे और आप लोग उनको बताएंगे कि भाई साहब आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट, तो वो आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल करा देंगे। तो ये आसान सा सिंपल सा प्रोसेस होने वाला है जिसको आपने बस प्रोग्राम सुनकर ही नोट कर लेना है और हमारे प्रोग्राम में साथ रहिएगा पूरी पूरी 3 बजे तक। यहाँ पर आपके मैसेजेस मुझे मिलते जा रहे हैं, परवा हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, आप भी हाल आहिनि तव्हां जा, मां उमेद थी कयां तव्हां ठीक ठाक हूंदा, आमीन सुमामीन जी जी। और शायर किश्वर खरल हमारे साथ है, शायर किश्वर लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं, मैं ठीक हूं कहती हूं माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग शो, थैंक यू वेरी मच शायर किश्वर खरल। और फरवा कहती हैं आप ही अर्ज किया है, दिल धड़कता है तो डर सा लगता है कोई सुन ना ले, मेरी धड़कनों में नाम तेरा। अल्लाह, लालू हमारे साथ है, लालू भाई हेलो, और आपने लिखा है कि नाइस शो, थैंक यू वेरी मच लालू भाई। और हमारे साथ ही अर्ज मोहम्मद घोला भाई जिला जेकबाबाद से कहते हैं कि पसंद खान गोलो खान, अर्श मोहम्मद गोलो, अजहर अली और मजहर अली गोलो, जबरदस्त कंपेयरिंग लाजवाब प्रोग्राम, थैंक यू वेरी मच प्यारा भाई। अच्छा तव्हां पोस्ट के लाइक ऐं शेयर कंदा हलो, ठीक आहे। दीदार अली बिरोही कहते सलाम आरजे सदरा केसी हो, दीदार बिरोही फ्रॉम खान मोहम्मद बिरोही से, दीदार भामा ठीक आहे, तव्हां ॿुधायो कीअं आहियो, मज़े में आहियो। और अबू हनीफ अलबलोटी हमारे साथ है, गुड आफ्टरनून सिदरा मैम, थैंक यू वेरी मच, आपको वेलकम कहते अबू हनीफ। और तारिक खान हमारे साथ मौजूद है, तारिक भाई कहते नाइस यू, थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई। जैन अली लिखते हैं कि जो तुम्हें देख के भी किसी और को देखे वो एक तमाशा ही है, तालिब दीदार नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। मोहम्मद जमान हमारे साथ मौजूद है, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम दिल से माय स्वीट बुआ जी, आपको भी वेलकम कहते हैं प्यारे भाई जी। اور جی شازیہ علی ہمارے ساتھ ہیں. وعلیکم السلام شازیہ, ویلکم کہتے ہیں آپ کو بھی. لکھتی ہیں کہ آپ ہی عرض کیا ہے, تمہیں دیکھنا میری عادت نہیں, اب میری عبادات بن چکی ہے, جتنا بھی آپ کو دیکھوں دل پھر بھی کہتا ہے ایک بار اور دیکھوں. اللہ. لالو ہمارے ساتھ بھائی کہتے ہیں نائس یو, تھینک یو ویری مچ. اور شازیہ کہتی ہیں شو لائک اور شیئر کر دیا ہے, بہت شکریہ شازیہ. اور فہیم بھائی کہتے ہیں کہ کدہیں بھی توتے دوار دل جان بوٹ با تو بھلی ہلی آ بل لڑکا آلہ تڈہیں بھی ہوندا متا چی آجیا نہ تھیں بھی. شیخ ایاز واہ واہ. وعلیکم السلام علیہ السلام عدد یری ادھا چھا لائے خوش آئے سفر چاہ کو سلیٹ تلم مسجی دبی ادھا اساں کراچی کھا اسلام آباد پوتا آئیوں وری کچھ دیا میں کراچی ناسی گھومن ویا آئے یا کم جے سلسلے میں ویا آئے ہو آئے دیو حالوال دی سکن بیوٹی کریم سان کھنی ویا آئے یا پھر رینگے کھالی ویا آئے ہو دی سکن بیوٹی کریم جو استعمال کرنا رہو بابا چاہے تمہاں کتھے بھی ہو جو کتھے بھی رہو. ڈی اسکن بیوٹی کریم پوچھائیں تھا بھی رہو تو کتنے کتنے ملن تھا. اگر اتنے ناہن اویلیبل تو تان نمبر تھی رابطہ کرے اتنے بھی اویلیبل کرائے سکو تھا. ٹھیک ہے علی رضا لگاری بھائی ہمارے ساتھ گوٹ جام خان لگاری سے. علی رضا لگاری بھائی وعلیکم السلام. اور میں ٹھیک ہوں کہتے ہیں تمام نائس شو ہے آپ کا. مجھے پریے جی تم اچھا چلے آپ نے گانا لکھا ہے ڈیڈیکیٹ. اظہر لگاری, عاقب لگاری, اعظم لگاری, مظہر لگاری, انور لگاری, آج غلام مصطفیٰ ٹالپور, امام بخش کھوکھر, سسٹر سدرا بھائی والوں کو بولو کہ جاتے ہوئے ڈی اسکن بیوٹی کریم لے کے جائیں. تمام اچھی ہے ڈی اسکن بیوٹی کریم. ہاں جی بالکل, میں آپ کو بتاتی ہوں تو ایسا ویسا پروڈکٹ تو نہیں بتاؤں گی نا. ڈی اسکن بیوٹی کریم جو ہے نا آپ سارے لوگ استعمال کیجیے, تمام بھائی لوگ, تمام بہنیں ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا یوز کر کے اپنی خوبصورتی میں اضافہ لا سکتے ہیں, خوبصورت سے چہرے کو مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں. اور نذیر بھائی ہمیں سن رہے ہیں بلوچستان. فروا خاں پوچھو فاروا کھائے تھی یا نہ فاروا آنا کون آیا ہے, جدید موسم ایندی تو فروا ضرور. دات اللہ مدانی وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں. کہتے ہیں کاپی سانگ, ہاں جی بالکل لگاتے ہیں آپ کے لیے. اور ایسے ہی آپ ہماری پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے جائیے. ٹائم ہوا ہے جناب شارٹ کمرشل بریک, تو بریک لیتے ہیں جلدی سے, واپسی آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں. تو بریک تے پیر بھی لازمی ہوں دعا ہے بابا. ڈی اسکن بیوٹی کریم جو استعمال کرو پیا کون مکھے کامنٹ میں بدھایو. ڈی اسکن بیوٹی کریم تمہاں استعمال کرنے جو ارادو کیو آیا نا یہ بھی مکھے کامنٹ میں بدھایو. کتھے کتھے ملے تھی کون تھی ملے یہ بھی تم مکھے کامنٹ میں بدھایو. جلدی جلدی بدھایو ماں اوہی ونی اوہی موٹان تھی. سو سٹے ٹیون, سٹے کنیکٹڈ اینڈ کیپ لسننگ وائی ٹیشن. ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹ. لگائیے اور خوبصورت ہو جائیے.
1: It's 1:30. It's 1:30 p.m. This time check is brought to you by
2: Heme Diamond Glow Bleach Cream. قدرتی جزن سا تیار کیل جے کاڈی قدرتی نکھار صاف نرم ائی روشن چہرو. Heme Diamond Glow Bleach Cream. This program is brought to you by
3: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing.
4: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم.

0: मेरा
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ जिसके मिनरल्स स्किन में फॉले स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए आपको दे बेटा निखरा निखरा वाइट एज ब्यूटी चमकता निखार ताजगी के साथ वाइट एज ब्यूटी ग्लोइंग स्किन का राज अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज़
3: GFM 91.6

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

तो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफ एम रेडियो नेटवर्क. हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मैरापुर माथली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं वाइटेश एंड डीज़ कैन ब्यूटी शो.

स्पॉन्सर किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से, और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। अच्छा, बहुत ज्यादा जरूरी मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो वाकई हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जैसे कि हम अगर देख लें हमारी बॉडी के लिए खाने पीने की कुछ चीजें वाकई बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तो वैसे ही हमारी स्किन के लिए होती है। तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें या फिर इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ बातें ऐसा हो सके। ओके जी, लेकिन उससे पहले क्या करना है, आप लोगों ने हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करना है और दोस्तों के साथ जरा हमारी पोस्ट को शेयर कर दिया करें ताकि वो आपके जो दोस्त है ना वो भी जान सके और पहचान सके डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में। और इसी के साथ साथ आप जरा पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और साथ ही साथ डायल करते रहिए वो नंबर जो कि आप लोगों को प्रोग्राम के अंदर बताए जाएंगे, जिनके ऊपर रब्ता करके आप भी अपने करीबी जनरल स्टोर पर डी स्किन ओके हो गया। और मैंने आज आप लोगों से सवाल बताया कि दुनिया का पहला मोबाइल फोन किस कंपनी ने बना दीजिए ट्रिपल स्किन ब्यूटी क्रीम। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जनाब एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार हुआ है जनाब जो कि आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि आपने जो इतने ढेर सारे प्रोडक्ट लगा लिए हैं ना उनमें ये एक अनोखा जो है ये मेडिकेटेड डी स्किन ब्यूटी तैयार किया है जो हम केमिकल से पाक उसके निकल और वो ऑल स्किन अगर आपकी स्किन सेंस आप इस्तेमाल कर सके तो ये आपके लिए मौजूद है स्किन ब्यूटी क्रीम जो की जनाब एक मेडिकेटेड फार्मूला और सिर्फ आपको और रातों के देने वाले। अगर आप भी एसिड है ये तमाम चीजें ऐड की गई हैं जनाब डी इस क्रीम ना सिर्फ एक नाइट क्रीम है बल्कि ये टू वन फार्मूले से मुराद ये कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करेंगे ना तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करने के बाद आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की नीड नहीं पड़ेगी क्योंकि डी स्किन ब्यूटी ना ये जो इतने करोड़ों तादाद में हमें प्रोडक्ट नजर आते हैं तो उन तमाम प्रोडक्ट्स में सिर्फ दो से तीन प्रोडक्ट्स है जिनके अंदर वाइटामिन बीट्स और माइक्रो बीट्स की जो ना वो एडिशन की गई है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास भी कोई अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए, कोई सेफ प्रोडक्ट होना चाहिए, कोई जनाब प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए वो भी मुनासिब सी कीमतों में आपको मिले तो ये आपके पास डी स्किन ब्यूटी क्रीम मौजूद है। और ये खास ब्यूटी क्रीम आप हर स्किन के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं ना तो इसके अंदर विटामिन बीट्स और माइक्रो बीट्स जो हैं या कि स्किन के अंदर तक जाकर आपके चेहरे पर जो है ना वो फेशियल जैसा निखार लाते हैं, आपके चेहरे की स्किन ग्लो करती है, आपके चेहरे पर जो है ना ये रिंकल्स का खात्मा हो जाता है, आपके चेहरे पर जो ये डार्क सर्कल्स आ जाते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम जो कि आपको परेशान कर चुके हैं तो वो ऐसे झट से गायब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और आपको मिलेगी ऐसी खूबसूरती गुलाबों की तरह आप निखार करते रहेंगे और आप महकते रहेंगे और ये सिर्फ और सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल से होने वाला है। अगर आप भी दो रातें डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे बहुत ही शानदार से रिजल्ट्स मिलते रहेंगे और ये कमाल जनाब उनसे पूछिए जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जल्दी से कीजिए और इसी के साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ जो है ना आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है तो डी स्किन का फेस वॉश भी आप ट्राई कर सकते हैं। जो लोग भाई क्रीमों से थोड़ा अवॉइड करते हैं कि हम क्रीमें नहीं लगा पाते हैं तो आप डी स्किन का फेस वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं। डी स्किन का किट में अवेलेबल है, आप बस जाकर परचेज कर सकते हैं और अपनी खूबसूरती को जरा एक नया सा एहसास दे सकते हैं। नई नई चीजें ट्राई करना अच्छी बात होती है लेकिन चीजें वो ट्राई किया करें जो आपकी स्किन के मुताबिक हो और जो मेडिकेटेड फार्मूले से तैयार की गई हो। तो क्या ही कमाल के प्रोडक्ट आपके लिए लेकर हाजिर है खिदमत जनाब, ट्राई करके देखिएगा। अगर आप भी अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो डायल कीजिए 0332738439 बड़ी 332 है 73 84 309 यो नंबर आहे 03125025907 बड़ी 312 50 25 970 ये नंबर्स आहिनि जेके तव्हां डायल करे पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल कराए सघो था। सो अवेलेबल करायो बाबा ऐं पंहिंजी स्किन जो ख़्याल रखो, तव्हां ख़्याल न रखंदा त बाक़ी केरु रखंदो। तव्हांजी खूबसूरती हाणे तव्हांजे हथनि में आहे, ॾिसूं त करे था तव्हां खूबसूरत थियो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो। बिल्कुल जी, इस्तेमाल करती रहिए और मुझे जरूर बताया करें जैसे आप बता रहे हैं कमेंट्स में कि भाई आप भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं और आप मैसेजेस में भी बता रहे हैं कि आप भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जरूर अपना फीडबैक दिया करें ताकि सुनने वाली समातों को पता चले कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स कितने ज्यादा जरूरी हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं, आपके कॉमेंट्स ऊपर न चले जाए इसलिए मैं जल्दी से आपके कॉमेंट्स की जानेब आ जाती हूँ। नजीर भाई लिखते हैं कि जिंदगी का असल मकसद कायनात का असल शऊर हासिल करके बेसहारा इंसानों की जिंदगी में हौसला पैदा करना और मुरझाए हुए चेहरों पर मुस्कुराहट लाना है। बिल्कुल आपने सही कहा। और निदड़ी हमारे साथ मौजूद है।

0: हमारी फिदड़ी कहती है अस्सलाम वालेकुम स्वीटी, वेलकम टू शो। तबियत कैसी है शोना मोना? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? और चाचा खालिद कहती है बेटा सिडो अस्सलाम वालेकुम। कल सुना कि आप नहीं इतना जल्दी मैं शिकारपुर अगर जाऊंगी तो 4-5 दिन तो रहूंगी ना, वो कल थोड़ा सा ऐसे बस था कि कुछ प्रॉब्लम थी उस वजह से नहीं आ पाए। और आपने गाना लिखा है, वैसे आज एक बैड न्यूज भी आप लोगों को सुनाऊंगी, वो ये कि मैंने जैसे ही आप लोगों के गाने डाउनलोड करने के लिए डाउनलोडर खोला तो उसमें थोड़ा सा मसला था, टेक्निकल इशू था, एरर आ रहा था, तो इसी वजह से शायद आज आप लोगों के गाने नहीं चल सकेंगे। मेरे लिए तो गुड न्यूज है पर आप लोगों के लिए बैड न्यूज है, तो बस जरा हौसला कीजिएगा, कहीं आप बेहोश ना हो जाए कि आज आपके गाने शायद ना चल सके प्रोग्राम में। अच्छा, उन्होंने कहा अलावा शाजिया अली हमारे साथ मौजूद है, आपने भी लिंक शेयर कर दी है। और निदड़ी क्या कहती है, लिखती है कि ये टॉपिक तो ओल्ड लोगों के लिए है, हमें क्या पता। भाई आपको पता होना चाहिए, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मेरी शोना मोना और किशोर भाई कहते हैं कि सलाम अदा स्मार्ट आयो आ, तुम भी आयो आही या भूत आमा, बिल्कुल सरासर आयो आया ताने सी सगुत। आई तो हाँ डे स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो कोन मुखे लाजमी बुधाई वठजो। और फहीम भात आ टॉपिक जो जवाब दिनो आहे ठीक हो गया। दर्दे दिल हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून माय स्वीट ब्यूटीफुल आरजे चंदा जानी, आप कैसी हैं? मैं बहुत खूबसूरत, आप बताएं आप कैसी हैं? कहती कि दुआएं आपके लिए हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको वो सब दे जो आप दुनिया और आखिरत में चाहते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको मुस्कुराने की इतनी वजूहत दे कि आप पिछली तकलीफें भूल जाएं, आमीन। और कहती कि मेरी दुआ है कि अगले आंसू आपकी आंखों से खुशी के आंसू आए। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको ऐसा मुस्तकबिल दे कि आप माजी के सारे गम भूल जाएं। अल्लाह पाक आपके लिए हर काम में आसानी पैदा करे, आमीन आमीन सुमा आमीन। सारे लोग आमीन बोलिए, भी देखे कितनी प्यारी दुआ दी है मैंने निदड़ी ने। और दूसरी निदड़ी ने दो निदा है, ये दर्दे दिल का नाम भी निदा है। और चाचा कहते हैं कि बहुत सोच रखा है बेटा से जो हमने डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में, तो वो तमाम चीजें मेरे साथ शेयर कीजिए, आपने क्या क्या सोचा है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में। अख्तियार अली गबर भाई हमारे साथ है और आप हमें सुन रहे हैं जी विलेज मोहम्मद उस्मान से, भाई को वेलकम इन खुश आमदीद कहते हैं। और किशोर भाई कहते हैं कि तू जो आजकल के बार बार के टॉपिक खबर आ है, अच्छा यानी कि तमाम के जवाब अच्छे थो। हाँ पर ऐसा निदड़िया के तनाथ हो जाए, यानी कि निदड़ी बार बार खा भी चटो। तो आप मुझे बताइए टॉपिक का जवाब क्या हो सकता है। और इसके साथ साथ मोहम्मद जमान भाई कहते हैं टॉपिक जो जवाब लेने हुआ है ओके। और मीर मोहम्मद बिरोही भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ जी, आप बताएं कैसे हैं? और टॉपिक का जवाब दिया इरफान सियाल साहब, गुड आफ्टरनून मैम आरजे, वेलकम सर। किशोर भाई कहते हैं आज टॉपिक पे अच्छा, कहती है जो टॉपिक ही रख, चलो ठीक है ये टॉपिक रखूं था, बाबा टॉपिक चेंज कयो वने तो, पर बे जेको कलाक वेंदासी ना तो उनमें तां वरी ने टॉपिक जो जवाब दे जो। तो एक इंसान के कहीं चीज जो गुरूर हुंदो आहे, हुस्न जो पैसे जो या बियो कुछ वरी छातो थी सके, हुस्न ही पैसो ना जेते इंसान मस्ती कंदो आहे। सो तामो के बुधा एक इंसान के गुरूर आखिर कहीं चीज जो थी सके, तो हुस्न जो या वरी पैसे जो। बियो वरी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो भी थी सके तो। सम सेज आई एम स्वीटी बिल्कुल जी, पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। और मुझे बताइए आप मुझे कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज कंप्यूटर क्रीम लगा क्रीम नहीं लगाते क्रीम क्यों नहीं लगा रहे
1: जो तुझको झूलेगा वो
0: अरे भाई ये हुसन आपको मिला है, ये मेहरबानियां है डी स्किन ब्यूटी

तो आप भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहिए और मुझे बताइए आप भी लगा रहे हैं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आपकी खूबसूरती में चार चांद ला देगा जनाब। आप इतने खूबसूरत हो जाएंगे कि लोग आकर पूछे वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। और बताइए ये कमाल है डी स्किन ब्यूटी। अरे गाने इतने अच्छे लगाती हूँ कि मैं तो गाने में मस्त हो जाती हूँ, लेकिन आपके कमेंट्स कौन पड़ेगा, तो मैं ही पढ़ूंगी। वापस आ जाते हैं जी, और हमारे साथ यहाँ पर सुनील कुमार महाराज कहते हैं डी स्किन क्रीम अवेलेबल। सुनील कुमार जनरल स्टोर कंडियारी। ओके जी, जितने भी लोग हमें कंडियारी वाले सुन रहे हैं वो सुनील भाई के जनरल स्टोर से जाकर क्रीम परचेज कर सकते हैं, तो जाइए और परचेज कीजिए। हमारे इरफान सियाल साहब कहते हैं गुड शो मैम, थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा मीर मोहम्मद बिरोही भाई, थैंक यू आप हमारे साथ हैं। अब्दुल रजाक कुंभर भाई हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। मुश्ताक अहमद कुंभर भाई कहते हैं बहन सिद्रा कैसी हो, बिल्कुल चाक को हाथ सफा चाक को सलेट। और कहते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम मोहम्मद खान में इस्तेमाल कर रहा हूँ, या मोहम्मद खान इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा चलें ठीक है, सब इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर नहीं मिल रही है तो जो नंबर आपको बता रही हूँ ना उसके ऊपर रابطہ जरूर कीजिएगा। रابطہ करने से ये होगा फायदा कि भाई आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे, फिर आपको ये टेंशन नहीं होगी कि भाई हम कहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने करीबी जनरल स्टोर से इजीली जाकर डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कर सकते हैं। फरवा हमारे साथ आपने टॉपिक का जवाब दिया है, ओके हो गया जी। फहीम भाई कहते कहता लाड़काना में पाकिस्तान चौक ते फारवन जो जुलन था, फरवा के बुधायो हेडे होडे न मने फारवा वठना। अच्छा सही आ बुधो नो बाबा एहतराम डी स्किन ब्यूटी क्रीम पूरो नालो वठना तॾहिं तव्हांखे दुकानदार बि ॾींदो, अगरि तव्हां अधु नालो वठंदा दुकानदार कंफ्यूज थींदो, पोइ तव्हांखे कोई बि प्रोडक्ट ॾेई छॾींदो। तव्हां पूरो नालो वठो, तव्हांखे ख़बर हुजे त बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे मथां जेको आहे न डॉक्टर माई जो फोटो। और अख्तियार आपका मोहम्मद यूसुफ पंवर भाई हैं गोठ अच्छा मीरपुर, बेहतरीन प्रोग्राम सलामत रहो। थैंक यू प्यारा भा, तव्हांजो गोठ मूंखे समझ में न आयो, सो मोहब्बत आहिनि सोने भाजू प्रोग्राम ॿुधो पिया। और फरवा थैंक यू सो मच, तव्हां मुमताज मले जो गानो ॿुधो था, ॿुधण चाहियो था, मां कोशिश कयां थी हलाईंदसि गानो। और हुन खां अलावा चाचा खालिद कहते हैं असां ग़रीबनि जा कॉमेंट मथे हलिया विया, अदा साईं कोन विया न अदा साईं, तव्हां सबर कंदा कयो थोरो अदा साईं।

बिल्कुल जनाब. और यहाँ पर आप टॉपिक फॉलो कीजिए. टॉपिक जरा चेंज हो चुका है. आप मुझे बताएं कि एक इंसान किस चीज को लेकर गुरूर करता है, पैसे को लेकर या फिर हुस्न को लेकर? क्योंकि हाँ, ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिससे इंसान गुरूर कर सकता है. मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो अपने हुस्न पर बड़ा गुरूर करते हैं. तो हुस्न पर गुरूर करना ये अच्छी बात होती है या नहीं, ये तो वैसे हम बताएंगे आप लोगों को. लेकिन आप मुझे बताइए कि एक इंसान आखिर किस चीज के ऊपर ज्यादा गुरूर करता है, पैसे पर या फिर खूबसूरती पर? अच्छा फहीम भाई कहते हैं कि पूछते हो ना तुम क्या पसंद है मुझे. खोसू भाई हमें हैदराबाद से सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया. वासु भाई ना केड़ा हाल है तमाचा. प्यारा भा मैं ठीक है, मैं तब नहीं लिए ये भी बात है. अब्दुल गफार भाई हमें सुन रहे हैं मेलसी से. खुश आमदीद प्यारे भाई. डी स्किन करी भाई, कुछ लोगों का तो तुक्का भी काम आ जाता है. वसीम भाई हमें सुन रहे, टॉपिक का जवाब दिया है बढ़िया. कहते आपका शो वीआईपी है, थैंक यू. हजार भाई आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम हजार भाई. और मुजाहिद मलिक हमें सुन रहे, कहते सिडो अच्छी वयासी महफिल में वेलकम त कंदी कर पक्की. वेलकम बाबा, वेलकम ताकि भली करे आया. खुशामदीद स्वागतम. पक्की कोनिया, पक्की कोनिया. अब कढ़ाई कम है तो अब डी स्किन ब्यूटी क्रीम यूज ना मोना हो जाएंगे. स्किन ब्यूटी क्रीम तो आप स्किन ब्यूटी क्रीम लगाना चाहिए. ब्यूटी क्रीम आप हर सीजन में लगा सकते हैं. मेडिकेटेड फार्मा

रास्ता है, तो लगाते रहिए और खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए। मलिक नजर हुसैन भाइयों में सुन रहे हैं लाजवाब प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया। निदड़ी कहती है कि निदड़ी मैं हूँ बस, हाँ हाँ तू तू बस, थदो थे थदो फकीर। दर्दे दिल कहती है कि इसमें कोई शक नहीं है कि तुम खूबसूरत नहीं, बहुत खूबसूरत हो। आईली मेरे को लगा ला छाती चले। अच्छा दर्दे दिल कहती है कि आए हाय आज आते ही इंजॉय करवा दिया, डांस करने को दिल कर रहा है, आज डीजे फुल आजादी में। हाँ बाबा मुखे लगे तो अजमा आजाद आया। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है जब आप सारे लोग गानों की फरमाइशें कर देते हैं ना, तो मुझे लगता है कि ये भाई क्या मैं करूं अब, किस किस के गाने लगाऊं। तो जब मुझे लगता है भाई आजादी हाय एंजॉय करो अपनी आजादी, तो अच्छे अच्छे गाने सुनाऊंगी। आप जरा मौजूद रहिएगा और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहिएगा। अगर आप इस्तेमाल करें तो मुझे बताइए आपको रिजल्ट कैसे मिल रहे हैं, और टॉपिक को फॉलो कीजिए और साथ साथ मौजूद रहिए क्योंकि यहाँ पर टाइम हुआ है। उसके बाद जल्दी वापसी आप लोगों के पास आते हैं। आप भी कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिए और सुनते रहिए और साथ दीजिए। मैं यूं जाकर वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाइए तो जाइए।

0: It's 2 p.m. This time check is
1: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
2: GFM 91.6
0: It's 2 p.m. This time check is
2: Biocon International Pakistan
3: अब आप सुनेंगे GFM KTN
4: आपने मुर्दे इल्जाम फाज में ठहरा इसी तरह की दहशत गर्दी हम बलूचिस्तान में भी देखते हैं आए रोज क्वेटा में भी धमाके होते हैं तो क्या वहां पर भी जिम्मेदारी हम सरफराज बुट्टी वहां के वजीर आला पर डाल सकते हैं
5: सरफराज बुट्टी
4: साथ में दूसरा सवाल भी
5: एक ही कर ले बाकी से भी कर
4: सर ये छोटा तलाक चौधरी साहब ने जिस तरह से गुफ्तगू की उन्होंने बताया कि 70% अफगानी जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके दहशत गर्दी करते हैं उनमें इन्वॉल्व होते हैं सर अब तक ऐसा मैकेनिज्म क्यों ना बनाया जा सका कि वो जो अफगानिस्तान से आते हैं टेररिज्म पर रोका जा सकता
5: बात यह कि सरफराज बुट्टी डालें आप नेशनल एक्शन प्लान पे उनकी मीटिंग्स देखें मैं आपको कहता हूं आपने सवाल किया ना काश आप रिसर्च करके आते तो आप ये सवाल करते ही ना मेरे से आप कंपैरिजन कर लें कि पिछले एक साल में सुहेल अफरीदी की नेशनल एक्शन प्लान पे कितनी मीटिंग्स हैं और सरफराज बुट्टी की कितनी मीटिंग्स हैं दूसरा सरफराज बुट्टी ने दहशतगर्दी की तदारक के लिए कितनी इक्विपमेंट अपनी कितनी ट्रेनिंग करवाई है कितना अपग्रेड किया अपनी पुलिस को और सुहेल अफरीदी ने कितना किया तीसरा वफाक से उन्होंने अफसर मांगे उन्होंने कहा अच्छे अफसर दें पुलिस अफसर दें उधर डिप्टी कमिश्नर शहीद हुए हैं आप क्या बात करते हैं डिप्टी कमिश्नर सामने खड़े होकर शहीद हुए हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पूरा इक्विप किया है ना सिर्फ अपने सिविल अफसरान को
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
6: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है सुनते रहो GAFM 91.6
7: खुशखबरी आने अवा के परेशान थे जी का भी जरूरत न आए जे करे तवा कें भी बीमारी में मुब्तला आयो या बीमारी पुरानी थी वही आए तो उन बीमारी जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन अवां बे एक दफो आजमाए दिसो चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया

0: क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद है। क्लिनिक जो टाइम आई डी है हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 बजे का शाम 5 बजे ताई। जुमा में पाते क्लिनिक बदीन स्टॉप रोड पुरानी सब्जी मंडी MCB बैंक जे सामू नया पुल हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाए राब्तो करे 777।
1: हक सच जो आवाज़ गीत संगीत जो आवाज़ जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़ बुधंदा रहो।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: तो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर आप इस्तेमाल करने वाले हैं तो क्या ऐसी बातें हैं जो कि आप लोगों को मिलने वाली है, क्या ऐसी खूबसूरती जो कि आपको मिलेगी जब आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे।

कि ये जो प्यारा गाना मैंने लिस्ट में लगाया, ये गाना किसको डेडिकेट जाने वाला है? ये जी गाना डेडिकेट जाएगा हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जी फरहान गोलो, वो हमें सुन रहे हैं और हमारा प्रोग्राम बड़े शौक से सुनते हैं। फरहान भाई, आपको वेलकम कहते हैं और आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो ये गाना आपको डेडिकेट जाता है। एंजॉय कीजिए और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं।

और बिल्कुल आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम को ढूंढ सकते हैं। फरहान भाई जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो वो बिल्कुल आपको कह रहे हैं भाई आप भी ढूंढिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल

नहीं हुई तो आप नंबर के ऊपर रابطہ कर सकते हैं. जो नंबर आपको बता रही हूँ प्रोग्राम के अंदर उसके ऊपर आप रابطہ करके इजीली अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल करा सकते हैं. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर मिल रही है, डी स्किन का फेस वॉश नहीं मिल रहा, तो आप फेस वॉश को भी अवेलेबल करा सकते हैं. इसी अवेलेबल कराइए और खूबसूरती कदम रखिए, क्योंकि आप भी डिजर्व करते हैं खूबसूरत होना. सवाल मुझे बताएं कि एक इंसान को किस चीज पर ज्यादा गुरूर होता है, अपनी खूबसूरती पर या फिर पैसे पर. अच्छा, कॉल्स लेना मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोगों की. कॉलिंग नंबर है जनाब 03 22 22 22 and 88.

0: ओके जनाब, से यहाँ पर फर्स्ट कॉलर हम देखेंगे। फर्स्ट कॉलर कौन हमारे साथ मौजूद है, देखते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज अचे पियो? शायद इस कॉल में थोड़ा मस्त कॉल करें तो इस जगह पर जाकर खड़े हो जाएं जहां पर आपको लगता है कि भाई यहां पर हमारे यहाँ नेटवर्क सही आता है। और कॉलिंग नंबर है 0332132288। नेक्स्ट कॉलर की जाने पर मौजूद है। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, केयर मौजूदा? ओके, ठीक आयो अदा? मजे में प्रोग्राम बुधो पे प्यारा भा। अच्छा, केड़ो प्रोग्राम कंदी आया? नालो बालो अचे तो
1: प्रोग्राम जे नालो ने राइट एक बीटी क्रीम।
0: वाह वाह, आई बियो बी केड़ी क्रीम जे बारे बुधाईंदी आया?
1: नी क्रीम जे कासा ताके उना जे नालो थोड़ो कट तो जे राइट एक बीटी क्रीम जे कासा ताने
0: बुधाई व्हाइट एज ता जे ने में याद करे सजो डी स्किन ब्यूटी क्रीम ता विसरी वया लगे तो चलो ही भाई पान में भा भेण है तुम व्हाइटिश वो या डी स्किन ब्यूटी क्रीम वो सही भा डी स्किन भेण व्हाइटिश जी याद करी वो ओके, थैंक यू सो मच प्यारा भा। मोरो का तुम कॉल कई सोनी भाजी कॉल व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करना है तुम कड़ी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कर पाए मुख्य लाजमी बुधाइना कर डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई या कोनी ये भी बुधायो ही वाली कॉल भी वठूं था दिसों के रस्ते से। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, केर मौजूदा? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम का अगते न वदना त अस कॉल कटे छदीना सी। नेक्स्ट कॉलर आहे जी, केर दिसू था? हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: हेलो
0: हेलो
2: हेलो,
0: आवाज अचे तो?
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, केर मौजूदा?
2: आवाज
0: कोन तो अचे तमाई? मुजो आवाज वरी न तो अचे, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ हो गई। अदा ताजो आवाज दफो भलो पे अचे, काश मुझो आवाज भी तट भलो अची। हाँ, कॉलिंग नंबर जनाब 0332132288। नेक्स्ट कॉलर दिसूं था केर एस एस गड आए। हेलो जी, अदा ताजी कॉल लगी वही इतने मसरूफ लोग भी होते हैं भाई कॉल करके भूल ही जाएंगे भाई हमारी कॉल तो लग गई है लेकिन वो बात नहीं कर रहे थे। ओके जी, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, ये आप लोगों से हम जानेंगे। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल क्यों जरूरी है ये तो मैं वैसे ही आप लोगों को बताती रहती हूँ। तो नेक्स्ट कॉलर हम पिक कर लेते हैं, देखें कौन मौजूद है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
3: हेलो
0: हेलो,
3: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, केयर मौजूदा?
3: हेलो
0: हेलो जी, आवाज अचे तो? लगे तो असा हाँ स्टूडियो पन चेंज करो।
3: हेलो,
0: आवाज अचे तो? हेलो भाई, अब लग रहा है कि हमें अपना स्टूडियो चेंज कर लेना चाहिए क्योंकि लोगों की आवाज सही आ रही, अब हमारी आ रही है। ये हमें फोन चेंज करने से ऐसा हो सकता है कि भाई लोगों की आवाज सही आ जाए, लेकिन ये हो गया कि भाई लेकिन अब हमारी आवाज नहीं जा रही है। क्या लॉजिक है भाई, चीज समझ नहीं आ रही। ओके, सो कॉलिंग नंबर 0332132132।

0: 888 अगर आप भी कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं और प्रॉपर सही जगह पर जाकर कॉल कीजिए ताकि भाई आप लोगों की जो आवाज है ना वो यहाँ पर सही आ सके और आपको मेरी आवाज भी सही मिल सके. नेक्स्ट कॉलर देखें कौन हमारे साथ मौजूद है. जी हेलो. हेलो जी.
1: हेलो
0: जी. आवाज अच्छी दो ब्रो. लग रहा है कि भाई अब ये कोई कश्मीर का मसला बन चुका है. अब कॉल ही शायद प्रोग्राम में लाइव लेना तो हम देखते हैं इस चीज को जरा अब क्या करना चाहिए. ये आवाज उन लोगों की नहीं आ रही थी तो फोन चेंज किया. अब हमारी नहीं आ रही तो हम स्टूडियो चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यही हाल मुझे नजर आ रहा है. वेल देखते हैं क्या करना चाहिए इस चीज का. वैसे तो हाँ जी प्रोग्राम में कॉल्स लेना चाहिए ये कहा गया है. जरूरी है कॉल्स लेना प्रोग्राम के अंदर तो इसी प्रॉब्लम की वजह से मैं कॉल जो है ना वो थोड़ी अवॉइड करती हूँ प्रोग्राम के अंदर. वेल यहाँ पर आप लोग डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं कि नहीं वो जरा मुझे बताइएगा. डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल हुए हैं या फिर नहीं ये भी आप मुझे बता दिया करें क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि भाई डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करके अपनी खूबसूरती में इजाफा ला चुके हैं. तो चाहे आप मर्द हजरात हैं चाहे आप खवातीन हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए भाई. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों की स्किन के मुताबिक ही तैयार की गई है और सबसे बेहतरीन
2: क्योंकि यही हाल मुझे नजर आ रहा है. वेल देखते हैं क्या करना चाहिए इस चीज का. वैसे तो हाँ जी प्रोग्राम में कॉल्स लेना चाहिए ये कहा गया है. जरूरी है कॉल्स लेना करती हूँ प्रोग्राम के अंदर. वेल यहाँ पर आप लोग डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं नहीं वो जरा मुझे बताइएगा. डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपके करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल हुए हैं या फिर नहीं ये भी आप मुझे बता दिया करें क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि भाई डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करके अपनी खूबसूरती में इजाफा ला चुके हैं. तो चाहे आप मर्द हजरात हैं चाहे आप खवातीन हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए भाई. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों की स्किन के मुताबिक ही तैयार की गई है और सबसे बेहतरीन बात यह मेडिकेटेड फार्मूला है. तो भाई कोई टेंशन की बात ही नहीं कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं. सारे लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं और खूबसूरत. अच्छा मेरे पास एक गाना है तो साथ साथ हम जरा गाना भी सुनेंगे. ये गाना है जी एआई का गाना तो एम ही आकर कोई ना बोले इंडियन गाने लगा रही हो गाना है थाम्बा थाम्बा. और इसी के साथ साथ फरवा कहती है डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाकर हुसन पर बड़ा गुरूर करते हैं. अच्छा चाचा आपका जो दूसरा टॉपिक का जवाब था ना वो ऊपर चला गया है अल्लाह को प्यारा हो गया. और किशोर भाई कहते कि शुक्र है मुझे नाले जा पैसा कौन था हलन न था मानो हु भी रोड थे ओशल नागाल में दम आवे फिर पोसा अमीर हो जाऊंगा.

किशोर सुमाटू गोपांग, आपने जो है ना वो लिंक शेयर कर दी है, तो आज लिंक एरर आ रहा है तो ये मुझसे प्ले नहीं हो सकती है, तो किस होंगे है मुझे कहती है हन क्या कह रही हैं। एहसन अली बुक्टी भाई आपको भी वेलकम हो गया, प्रोग्राम में मौजूद है। निजाम भट्टी कादरी भाई हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम। और भाई मटियारी खां से सगर मौजूद है मटियारी में, भा तहां के डी स्किन ब्यूटी क्रीम आराम से मिले पई हर के था, तो तमाम अठी सगो था डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सगो था।

अच्छा पोस्ट को लाइक और शेयर किया है नहीं ये मुझे जरा बताया करें और पोस्ट को लाइक और शेयर कर दिया करें क्योंकि शेयरिंग जो होती है ना उससे ये होता है कि भाई बहुत सारे लोगों को हम बता पाते हैं कि भाई आप भी डीएसकेन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके अपने खूबसूरती पे ये जो प्रॉब्लम्स आ चुके हैं ना आपके उनको हटा सकते हैं, खूबसूरती को हमेशा महफूज रख सकते हैं क्योंकि डीएसकेन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल के फौरन बाद ही आपके चेहरे पर आ जाती है जी चमक ग्लो और आपको ऐसा महसूस होता है कि भाई वाकई अब हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं दिल खोलकर क्योंकि ये मेडिकेटेड फार्मूला है और मेडिकेटेड फार्मूले जो होते हैं उससे हर स्किन के ऊपर आपकी स्किन सेंसिटिव हो या फिर कॉम्बिनेशन तो मत इस्तेमाल आप सब लोग कर सकते हैं।

0: कोई देरी के लिए टाइम हुआ है जरा यहाँ पर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं। आपने कहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिस्टनिंग व्हाइटिश ब्यूटी शो। एसपीटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट लगाइए और खुद
1: FM 91.6 सिंध जो आवाज उतरदा रहो।
2: It's 2:30 PM. Check is brought to you by
3: Heme Diamond Glow Bleach Cream, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस, चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी। Heme Diamond Glow Bleach Cream.
4: This program is brought to you by
5: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla
6: ka asal raaz Deep Skin Beauty. Isme maujood vitamin E beads aur jadeed micro beads formula aapki jild ko banaye nikhri aur chamakdar. Sirf 2 din mein dark spots ko kare fade aur de kudrati asli glow. Deep Skin Beauty Cream, asli glow har din ka show.
1: Abhi budho pyar, jiye Hyderabad Matyari FM 91.6 सुन जो आवाज।
7: ओ पिताई पिता ते बसे नूर मुझो तो
1: सुन जो आवाज, बुदंदा रहो।

बिल्कुल जनाब, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या ही बात है, अगर आप इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं तो जल्दी जाइए, परचेज कीजिए और इस्तेमाल कीजिए। इसी के साथ साथ अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए आपको नंबर अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल करा सके, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल कराने के

वापरासी 300 नंबर। ही बई नंबर साइन तव्हां डायल करे पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन जो फेस वॉश आहे अवेलेबल कराए सघो था। ऐं अवेलेबल कराईंदा त इहा आसानी थी वेंदी, बाबा तव्हांखे काॾे शहर न वञिणो पवंदो ऐं तव्हां इहो न सोचींदा त हाणे असां किथां वञी करे जेको आहे न डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी सघूं था। बाबा तव्हां पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल करायो, ॻाल्हि ई ख़तम थी वेंदी, बसि उतां तव्हां वञी ईज़ीली वठी सघो था। जो आप मर्द हज़रात ख़वातीन हर कोई डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करके अपनी खूबसूरती में इज़ाफ़ा ला सकता है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये खास बात है जनाब की डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना इस्तेमाल करने के बाद आपको इतने प्यारे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं कि आप खुद ही कहेंगे कि भाई हम पहले क्यों नहीं लगा रहे थे। तो पहले भी लगाइए, अभी लगाइए, देर नहीं हुई, जल्दी जल्दी से डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करते जाइए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में ये चीज तो आप बिल्कुल ही जानते हैं जनाब कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये मेडिकेटेड फार्मूला है। तो मेडिकेटेड फार्मूला जो उन्होंने ये फार्मूला तैयार या कोई भी स्किन ब्यूटी क्रीम कह रहे हैं तो बिल्कुल कीजिए। अपनी रोजमर्रा की ब्यूटी केयर रूटीन लीजिए, साथ आपकी स्किन केयर जो है वो साफ सुथरी और इसी तरह पहले क्यों नहीं लगा रहे थे, लगाइए, देर नहीं हुई, जल्दी जल्दी चीज तो आप बिल्कुल, मतलब ये होता है कोई टेंशन की बात ही नहीं कि भाई नहीं देती है। तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी दिखाने के लिए क्रीम स्किन के जीत खास बना देगा और आपकी स्किन जो है वो साफ सुथरी हो जाएगी, अच्छी ताजगी और एतमाद का एक रूटीन में आप जनाब एक छोटा सा इजाफा और डी स्किन ब्यूटी क्रीम एड कर लीजिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम

है। इसके अंदर जो है ना ये विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स जो है ना, इन्होंने भाई ये प्रोडक्ट जो है ना इसकी 100 गुना जो है ना वो पावर बढ़ा दी है, और आपके चेहरे पर अब इतना अच्छा रिजल्ट आएगा, निखार आएगा कि जब आप इस्तेमाल करेंगे सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से आपको मिलेगा परफेक्ट सा निखार। तो ये कमाल होगा जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम का, और डी स्किन का यहाँ पर करीबी जनरल स्टोर पर के लिए तक ईजी रहा है। तो फेस वॉश जो है ना ये भी बहुत, ये दोनों प्रोडक्ट जो है ना प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, तो आप अवेलेबल करा कर सकते। इसके अंदर हाइलोरोनिक स्किन के अंदर तक जाकर आपके चेहरे की स्किन को मॉइस्चराइज करता है, डीपली क्लीन करता है, और आपके चेहरे की स्किन को हमेशा हाइड्रेट रखता है। तो डी स्किन का फेस वॉश लगाइए, डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए, दोनों चीजें लगाइए, खूबसूरत होते जाइए। अच्छा, हम ये वाला गाना सुनेंगे और आप मुझे बताइए एक इंसान को गुरूर किस चीज, सूरती पर या फिर पैसे पर।

0: शुरुआत।
1: पांग ने यहाँ पर सवाल कि क्या मैं भी डी स्किन का कर सकता हूँ या फिर सिर्फ खवा देंगे। अरे भाई, डी स्किन का पीले यानी कैसे खवाती है हजरात भी लगे टाइप में ये सेंसिटिव पर आप आराम से इस्तेमाल इस वॉश बहुत कमाल का प्रोडक्ट आ जाएंगे। पोस्ट को लाइक और अच्छा फजली हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम असलम, हैप्पी मंडे आफ्टरनून माई स्वीट बेस्ट आज शहजादी से सही बताऊंगी। कहते सलाम टू माई स्वीट हार्ट मॉम इन कायनात और सब स्वीट सिस्टर्स को। अच्छा महबूब अली मोरो सिटी से मैं सुन रहे हैं। वालेकुम असलम सदरा मुस्कान, खुश रहो हमेशा के लिए। कौन जो सदरा मुस्कान सॉन्ग सुनाए। अच्छा ये गाना होंगे ठीक है। और प्यारे भाई जान आप मौजूद हैं। उन्हें कहा इलावा पेनल थे खोड़ सारा उन्हें कहा इलावा मकसूद मला हमारे साथ कहते हेलो सदरा मुस्कान आपका शो सुन रहा हूँ। आज शमन का गाना सुनाना पक्के वो इंतजाम कया सब कर रहे हो सुबह बुधनासी। सलाम वालेकुम असलम भाई डी स्किन कर रहे हैं क्या रहे हैं बेवा मल कोली फ्राम विली लग कहते हैं डी स्किन बिगा महबूब अली मोरो सिटी से कहते हैं अच्छा नोकिया कंपनी सही है जी। दादू का इमदाद शिर हुसैन जतोई किफायतुल्लाह जतोई फारूक हैदर जतोई भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। इनके चाचा खालिद को सलाम मंजूर अली खास के लिए और खैबर मोहम्मद खास के लिए झंडो मरी खास असगर मौजूद है। ओके भाई आपको भी वेलकम हो गया। और ईशा हमारे साथ कहती है कि शोना आप कैसी हैं आज मेरी माँ साथ अनम की मुकी है शायद आपने कल शादी है दो दिन लगाओ हमने इको साउंड लगाया है। ओके मैंने कोशिश करी अच्छे गाने आपको सुनाऊं। मक्सी स्किन ब्यूटी क्रीम का रिजल्ट आंध की पहल हंडी स्किन ब्यूटी क्रीम
2: इस्तेमाल
1: भाई काके जो बुदो तो माई चवया बाबा माँ के रोक है वहाँ मुझे नथा लायो पहले तो यही हमारा फेवरेट बना था तो हम इसीलिए ये वाला गाना भी सुनेंगे।

अच्छा एक शायरी है तो जरा हम वो भी शामली प्रोग्राम कर लेते हैं लगे हाथ. शायर सुना फरमाते हैं, सुनो जाना जाना. उसने जब ये बताया, उसने जब भी मुझे दे तब तब मौसम लोगों पर भी खुश और खेलते हैं. उजाड़ा मौसम जब आएगा गमो सहारा मौसम, तो जीने को भी दिल करता था, वो था जब पास को भी दिल करता था. अब तो नहीं होता पाना तो लकीरों में नहीं, उसको खोना से गवारा मौसम. हमने गारा मौसम जैसे तुम हो कोई किस्मत का सितारा मौसम. अब तो खुद को भी निखारा नहीं जाता हमसे जाना, अब तो खुद को भी निखार मौसम. अपने ख्वाबों को हमने तेरी आंखों का मौसम. हमको मालूम है अब लौट के आना तेरा है, अब घर नहीं मगर फिर भी खुदा हमको ना समझे. हिजरत का इशारा मौसम, सांस देती रही हिजरत का इशारा मौसम. तुम्हारा मौसम के मैं

लगाइए। अरे भाई लगाइए, कहते ही अच्छा टॉपिक का जवाब। हाल चाल है आप बताएं अपने। मैं हमारे साथ ही भाईजान बहुत मोहम्मद तैयब थे, वो कहा भी बुला थे वो भाई शो तुम्हारा चुला जवाब आए। थैंक यू। अब खान लगारी से साबिर लगारी वालेकुम अस्सलाम प्लीज प्ले खाली वोट मोहम्मद तैयब थे वो कहा भी बुला थे वो भाई कहते तुम्हारा शो ला जवाब आए। थैंक यू प्यारा सोना भाई। डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई कौन? अच्छा नरेश, नरेश भाई प्रोग्राम पसंद आ रहा है। ब्यूटीफुल सॉन्ग्स चॉइस थैंक। एनर्जी पैदा करना है ने, डांस करण ते मजबूर करना है ने। ये ना आकिब जरवार हमारे साथ है भाईजान वालेकुम अस्सलाम। निजाम भट्टी कादरी कहते मिलावट के दौर में अगर आइए तो वो आपको सिर्फ लोगों के दिलों में मिलेगा। क्या बात है, ये तो बढ़िया हो गया। और हिदायतुल्लाह कहते स्टूडियो चेंज नहीं मुल्क चेंज कर। वैसे माइक भी चेंज हो सकती है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाया नहीं। और जी रुखसार मरी मेरे को खांसी बहुत अच्छा है, रुखसार आमदीद कहते हैं। और हमारे साथ हैं जी मलिक जफर, मलिक जफर हमारे साथ हैं जी कहते हैं ओके थैंक यू। अच्छा अबू हनीफ लिखते हैं कि मर्द का गुरूर सिर्फ एक वफादार औरत होती है। या तो तमा बिल्कुल सही गाल कही। एक महामन पालारी भाई नूरिया बासी में सुन रहे हैं कहते हैं तुम्हारे शो वीआईपी आई ना दो उसका ओके जी। शफियो भाई वेलकम कहते हैं आपको हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम फ्रॉम। कल मैंने आपको आपका प्रोग्राम नहीं सुन पाई क्योंकि कुछ दूर से मेहमान आए हुए थे, इस वजह से प्लीज सॉन्ग चलाना सुभाणी तमाम जो गानो बुदनासी बतूल। वसीम भाई तमाम चौथा कहते हैं एक तेरी मुस्कान से पूरी दुनिया जो है ना वो रील लगती है, जब तुम बात नहीं करती तो सारा जमाना वीरान सा लगती जानती। स्पेशल ओट चलाओ रमजान। वहीं भाई कहते हैं खुदा करे मोहब्बत में ऐसा मकान आए किसी का नाम मैं लूं और लब पे तेरा नाम आए। अदा असा समझी वया से तमा न समझो। तमा बस डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर मैं सुन रही हूँ।

ही देता। हाय चाचा लगते हैं कि औरत और वफादार ना बाबा मर्द है ना औरत है वफादार। ये तो चीज बड़ी आम सी है कि नहीं करना चाहिए लेकिन औरत के मामले में ये चीज बड़ी फेमस है कि औरत बड़ी वफादार। तो नरेश भाई पसंद आया बहुत शुक्रिया। अखलाक भाई हमारे साथ मौजूद है नाई शुएब अली हमारे साथ ही। वालेकुम अस्सलाम शु, आप हमारा एंजॉय कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम और आपको वेलकम कहते हैं। जिन लोगों ने पोस्ट को लाइक और शेयरिंग किया जल्दी से कर दें, आज प्रोग्राम में माशाल्लाह काफी ज्यादा रश था और आप लोगों ने आपका बहुत शुक्रिया हूँ तो जरा सबके डरना चाहिए। सारा हमें सुन रहे हैं भाई बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। अखलाक आपका बाद बस आप लोगों से इजाजत लेते ही बड़ी तहां से मुला भाई जी 5 बजे वाले प्रोग्राम में। बिल्कुल जी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिएगा और डी स्किन ब्यूटी क्रीम वो मैं कभी तक इस्तेमाल नहीं। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये मेडिकेटेड फीड से है तो जल्दी जल्दी से इस्तेमाल करके अपनी खूब और वाले करें ना इनसे जरा बचिए उनको टीम को अपनी जिंदगी में एड की जो ना वो हासिल करते रहिए और हम प्यारे और प्यारे प्यारे बनते जाइए। और बड़ी तरह से मुलाकात मुझे जागरानी बात आज आप प्रोग्राम की ज्वाइन करो स्टॉप लगाए सारे प्रोग्राम में ज्वाइन कर जो सो मोकलाम सलाम सलाम हाफिज लव यू ऑल एंड टेक।

0: by Biocon International Pakistan.
1: अब आप सुनेंगे FM नेटवर्क पर KTN News.

जो मुजाहरो कयो केपीअ जे गवर्नर फैसल करीम कुंडीअ चयो आहे त सदर हिदायत कई त केपीअ में गवर्नर राज लॻाए छॾींदुसि। केपीअ में जंग वारी सूरत हाल आहे। पीटीआई इस्लामाबाद ते चढ़ायुनि जूं ॻाल्हियूं पई करे। पीटीआई जे लांग मार्च लाइ तारीख़ वरी तब्दील थींदी। सोहेल आफ़रीदीअ खे सलाह आहे त मार्च ख़तम करे छॾे।

पोइ सलमान अक्रम राजा बि हुकूमत खे ॻाल्हियुनि जी आश कई। पीटीआई अॻवान सलमान अक्रम राजा जो चवण आहे त लांग मार्च मुलतवी करे हुकूमत खे वक़्तु ॾिनो जीअं पंहिंजे फैसलनि ते नज़रसानी करे सघनि। हुकूमत सां जेके ॻाल्हियूं थींदियूं उन्हनि ते अमल कयो वेंदो। सूबे में अमुन न हूंदो त तरक़ी कीअं थींदी? पीए जे अक्सर इलाही हुकूमत बाबति हक़ीक़तूं जल्द वाम जे आॾो आणींदासीं। खैबर पख़्तूनख़्वा हुकूमत जो एहतजाज ते आहे। डॉलर जी किस्त लाइ किसान विच में ॻाल्हियूं अॼु थींदियूं। आई एम एफ मिशन नाणे वारी वज़ारत सां ॻाल्हियूं कंदो। आई एम एफ मिशन जो तंहिंजे इख़्तियारनि सां बि ॻाल्हियूं थींदियूं। ज़रियनि जो चवण आहे त टैक्स ऐं सूबनि खां वधीक टैक्स ऐं नॉन टैक्स रेवेन्यू बाबति सुधारनि ते बि ॻाल्हियूं थींदियूं। आई एम एफ खे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऐं दहशतगर्दी जी फंडिंग रोकण बाबति आगाह कयो वेंदो। शिंगाई तावन तंज़ीम जे नेशनल कोआर्डिनेटर जो ॿिनि ॾींहनि वारो इजलास अॼु खां इस्लामाबाद में शुरू थींदो। एस सी ओ जे ईंदड़ इजलासनि ऐं सरगर्मियुनि जी तयारियुनि ते गौर कयो वेंदो। पाकिस्तान खे ईंदड़ साल एस सी ओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट सरबराह इजलास जी मेज़बानी करणी आहे।

अमरीकी सदर ईरान सां हिन हफ़्ते ॻाल्हियूं थियण जो इम्कान ज़ाहिर करे छॾियो। डोनाल्ड ट्रंप जो चवणु आहे त उमेद आहे त अमरीका तर्फ़ां ॻाल्हियूं कंदड़ हलंदड़ हफ़्ते ईरान सां ॻाल्हियूं कंदा। अमरीका जंग खटी चुको आहे पर कार्रवाइयूं मुकमल तौर ते ख़तम न थियूं आहिनि। मिड टर्म चूंडुनि खां अॻु ईरान ते हमिलो करे सघां थो। ईरान ख़िलाफ़ जंग जल्द ख़तम थियण जी उमेद आहे। असांजो बुनियादी मक़सदु ईरान खे जोहरी हथियार ठाहिण खां रोकणु आहे। ईरान ख़िलाफ़ फ़ौजी ऐं मुआशी सतह ते कामयाबियूं मिली रहियूं आहिनि। ईरान अमरीका सां ॿीहर जंग करण लाइ बि तयारु आहे। सफ़ारतकारीअ ॾांहुं वापसि अचण लाइ को बि जवाज़ु न आहे। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास सिराचीअ चयो आहे त तहरान जंग जो ख़ात्मो चाहे थो। आबिना अर्म्स खोलण लाइ बि तयारु आहियूं। अमरीका जंग ख़तम करे असांजा मंझबंद असासा बहाल करे ऐं पेट्रोलियम विकिरो करण तां पाबंदियूं हटाई वञनि। जमायत इस्लामीअ जे अमीर हाफिज़ नईम चयो आहे त ॻाटे ट्रोड़ महांगाई सबबि माण्हुनि जो जीअण जंजाल बणिजी वियो आहे। लेवी ख़तम करण खां सवाइ हुकूमत वटि ॿियो को बि रस्तो न आहे। असां पुठिते न हटंदासीं। असां चाहियूं था त मसइलो पुरमन तरीक़े सां हल थी वञे। अवाम बिजली ऐं गैस जी लोड शेडिंग सबबि परेशान आहे।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जी FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा हो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा हो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा हो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: कानूनियूं घुर्जूं पूरी थी चुकी आहिनि। सोहेल आफरीदी जे कदमनि मां लॻी रहियो आहे त केपी हुकूमत दहशतगर्दनि सां गॾियल आहे। गवर्नर राज जो ऑप्शन हले या न, पर वॾो वज़ीर सोहेल आफरीदी न हलंदो। पीटीआई बानीअ जी आज़ादीअ खां पोइ पीटीआई खे ॻाल्हियुनि जी आश बि ॾियूं था। गवर्नर फैसल करीम कुंडीअ चयो त सूबाई हुकूमत अहिड़े हद ताईं न वञे जो गवर्नर सोहेल आफरीदीअ खां पोइ पीटीआई जे सेक्रेटरी जनरल सलमान अक्रम राजा बि हुकूमत खे ॻाल्हियुनि जी आश करे छॾी। पीटीआई अॻवान सलमान अक्रम राजा चयो आहे त लांग मार्च मुलतवी करे हुकूमत खे वक़्तु ॾिनो आहे, पंहिंजनि फैसलनि ते नज़रसानी करे हुकूमत सां तय थियल ॻाल्हियुनि ते अमल कयो वेंदो।
2: मुआशरे जो आवाज़ आहे, मज़लूम कॾहिं हुन जो को दाद फरियाद न थींदो आहे, किथे बि हुनजो सदारत न थींदो आहे।
3: नारेल कल्चर जेको आहे त हिकिड़ो टो फूंगो तलब करनि था, इहो किथो जो कानून आहे।
4: अॻे कतल थींदा, हाणे अगवा करे मुख़्तलिफ़ मुतालबा कया वञनि था।
5: हथु सच लिखण वारा साहसी, उन्हनि खे पंहिंजो सच न वणियो, इन जे करे असांजे साहसी बेबाक साहबीअ खे अगवा कयो आहे।
6: जेको बेबाक साहबी आहे अज़ीम ख़्याल, हुन बि फुल फोर आज़ाद सिंध पुलिस किथे निंड में सुठो पियो आहे, फुलका चोड़ो थो पए। असां इन अगवा जी सख़्त मज़म्मत था कयूं।
1: केटीएन न्यूज़ खानपुर जे रिपोर्टर अज़ीम सियाल जे अॻवा खे ॿ ॾींहं थी विया पुलिस मुगवी साहबीअ खे बाज़ियाब कराइण में नाकाम। पुलिस जी कार्रवाई बि ॻाल्हियुनि ताईं महदूद। अज़ीम सियाल जे बाज़ियाबी लाइ अमली क़दम न खयों। अज़ीम सियाल जे बाज़ियाबी लाइ कलम धणी सरापा एहतजाज बणियल, मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा ऐं धरणा। घोटकी, नौशरो फिरोज, गंबट, उबावड़ो, मीरपुर माथिलो, ठरी मीरवा, चक, बख्शापुर ऐं भानसैदाबाद में एहतजाज कयो वियो। जरवार, खीरपुर, दोदापुर, कुंभत, दड़ो ऐं तलार में बि कलम धणी जो एहतजाज। सखर में वकीलनि बि एहतजाज करे अज़ीम सियाल जे बाज़ियाबीअ जो मुतालबो कयो। कलम धणियुनि पारां अज़ीम सियाल जे बाज़ियाबीअ जो मुतालबो।

के टांक में दहशतगर्दनि जी पुलिस ते फायरिंग, टे अहलकार शहीद। वजीराबाद बाजार में दहशतगर्दनि जी ट्रैफिक पुलिस जो एएसआई असमतुल्लाह समेत टे अहलकार शहीद थिया। घरू वजीर मोहसिन नकवी पारां टिन पुलिस अहलकारनि जी शहादत ते डुख जो इज़हार। दहशतगर्दनि जे खात्मे वारे अज़म जो वर्जा। $1,20,000 की किस्त लाए आईएमएफ ए पाकिस्तान विच में गालियों अज थींदियों। अज आईएमएफ मशीन नाणे वारी वजारत से गालियों कंदो। आईएमएफ मिशन जो चैनी सूबन के नाणे वारे खातन की इख्तियार से भी गालियों थींदियों। जरिए जो चवण आया तो टैक्स नेट वधाइण ए सूबन खां टैक्स नान टैक्स बाबत आगाह कयो वेंदो।

कि सदर ईरान सां हिन हफ़्ते ॻाल्हियूं थियण जो इम्कान ज़ाहिर करे छॾियो। डोनाल्ड ट्रंप जो चवण आहे त उमेद आहे त अमरीका तरफ़ां ॻाल्हियूं कंदड़ हलंदड़ हफ़्ते में ईरान सां ॻाल्हियूं कंदा। अमरीका जंग खटी चुको आहे पर कार्रवाई मुकमल तौर ते ख़त्म न थियूं आहिनि। मिड टर्म ईरान ते हमिलो करे सघां थो। ईरान ख़िलाफ़ जंग जल्द ख़त्म थियण जी उमेद आहे। असांजो बुनियादी मक़सदु ईरान खे जोहरी हथियार ठाहिण खां रोकणु आहे। ईरान ख़िलाफ़ फ़ौजी ऐं मुआशी सतह ते कामयाबियूं मिली रहियूं आहिनि। ईरान अमरीका सां ॿीहर

घाटे ट्रोड़ महांगाई सबब मानन जो जीअण जंजाल बणजी वयो आहे। लेवी खत्म करण खां सवाइ हुकूमत वटि ॿियो को बि रस्तो न आहे। जमायत इस्लामीअ जे अमीर हाफिज़ नईम चयो आहे त असां पुठिते न हटंदासीं। असां चाहियूं था त मसइलो पुरअमन तरीक़े सां हल थी वञे। अवाम बिजली ऐं गैस जे लोड शेडिंग सबब परेशान आहे। बलोचिस्तान में मजदूरी लाइ वयल मुरीद शाख वासी अठ पोरियत अगवा थियल पोरियतनि जो तालुक मुरीद शाख वेझो ॻोठु मिठल ॾार सां आहे। वारसनि मूजिबि पोरियत बचनि जो पेट पालण लाइ बलोचिस्तान में मजदूरी करण विया हुआ। मजदूरनि खे बाज़ियाब करायो वञे। अगवा थियलनि में सिकंदर, नौमान, शमन, नईम, समी, आफ़ताब, बासित ऐं इंशाद ॾार शामिल आहिनि। इस्लामाबाद, पंजाब ऐं केपीअ जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसाति। रावलपिंडी, जेलम, सरगोदा, फैसलाबाद ऐं ॿियनि इलाइक़नि में वसकारो। मौसम ख़ुशगवार थी वई। पाक पतन, वतनी, आरफवाला ऐं ॿियनि इलाइक़नि में तेज़ बरसाति सां फीडर ट्रिप थी विया। पारा चिनार ऐं क्रेक समेत केपीअ जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसाति पई। मीर रज़ा केस लाइ जुडिशल कमीशन जे मुदे में वाद जो फ़ैसिलो न थी सघियो। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह समरीअ ते सही करे छॾी। काबीना जी मंज़ूरी रहियल जुडिशल कमीशन कार्रवाई 2 अक्टूबर ताईं मुलतवी करे छॾी। घरू खाते जे नुमाइंदगी कमीशन खे आगाह कयो त 1 अक्टूबर ते काबीना मंज़ूरी ॾींदी। वकील जिब्रान नासर चयो त सुपर मेडिकल बोर्ड कंहिंजे तसलीअ लाइ ठाहियो पियो वञे। छा डॉक्टर सुमया समेत समूरनि डॉक्टरनि स्कूल लिखियो?

0: सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच फोती कोटा तहत नौकरियों न डेण वारो तालीम खाते जो फैसलो रद्द करे छड्यो। अदालत जो स्कूल एजुकेशन खाते के नवे डीन में फैसलो करण जो हुकुम। फोती कोटा ते नौकरी डेण वारी दरख्वास्त रद्द करण वारे तालीम खाते की इस्तदा भी गैर कानूनी करार। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन के मेरिट ते फैसलो करण जो हुकुम। अदालत हुकुमनामे में चयो वयो त दरख्वास्त गुजार जे वालिद जे वफ़ात वक्त ब साल जी हद बंदीअ वारो कानून लागू न हो। दरख्वास्त गुजार खे तहफ़ुज़ हासिल आहे। हैदराबाद में वासा मुलाज़िमनि जो 18 महीननि खां पघारूं न मिलण ख़िलाफ़ एहतजाज। कंहिं बि नोटिस न वरितो। हाज़िर सर्विस तोड़ी रिटायर मुलाज़िमनि 87 ॾींहं बि एहतजाज जारी। मुलाज़िमनि जो चवणु आहे त आफ़ीसर हर महीने पघारूं खणी रहिया आहिनि पर नंढनि मुलाज़िमनि सां जुठ कई पई वञे। पघारूं ऐं पेंशन अदा करे परेशानी ख़तम कई वञे। ऐं नयो देरो में परणियल नारीअ खे कारा इल्ज़ाम हेठि क़तल करण जो इनकशाफ़। केटी मुमताज़ थाणे ते सरकार जे मुद्दत में केस दाख़िल। हिकु जवाबदार गिरफ़्तार। केस में मुकफ़ ॼाणायो वियो त घर अंदरि इतफ़ाक़ी गोली लॻण सबबि नाहिद ख़ातून जे मौत जो वाकियो साम्हूं आयो। पुलिस मूजिब मुख्य जवाबदार राजा खखराणी खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
4: खुशखबरी। हाणे अव्हां खे परेशान थियण जी का बि ज़रूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर

मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह। मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन, अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद है। क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाए राब्तो करियो 0306244770।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ जीए FM 88 नेटवर्क ते।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे
1: चलेगी इसकी कोई अभी उसको बचा नहीं सकेगा। ये कहते हैं कि मैं और खतरनाक बन जाऊंगा। मैं आज इसको इस KPK से और इस पेशावर से ये कहना चाहता हूं कि अफरीदी साहब आप तैयार रहे, जेल के अंदर होंगे, वही सलाखों के अंदर होंगे। जो लूट मार आपने किए उसका हिसाब किताब आपको देना होगा। जो आईनी खिलाफ वर्जी आपने किए और कर रहे उसका हिसाब किताब आपको देना होगा। जो आपने पहले से वही नौ मई और जो भी वाकयात किए उसका हिसाब किताब भी आपको देना होगा।
2: खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगंदो या वडो वजीर तब्दील थींदो, वफाकी हुकूमत जो मुख्तलिफ़ ऑप्शन ते गौर वीचार। वफाकी वजीर अमीर मकाम चयो आहे त KPA में गवर्नर राज जूं घुर्जूं पूरियूं आहिनि। KP जो गवर्नर फैसल करीम कुंडी सुठो माण्हू आहे। KP में कंहिं बि वक़्तु कुझु बि थी सघे थो। ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जा माण्हू वॾे अरसे खां दहशतगर्दीअ जो शिकार आहिनि। तब्दीली सरकार रुगो वॾा वज़ीर ई तब्दील कया आहिनि। अवाम जी क़िस्मत तब्दील नाहे कई। गवर्नर राज जो ऑप्शन हले या न, पर वॾो वज़ीर सोहेल आफरीदी न हलंदो।
3: देर के बरस कोई भी नहीं जा सकता और ना कोई अफोर्ड कर सकता है। अगर कोई इस बात में जगड़ाता है कि वो यहां पर गवर्नर राज लगा देगा, इमरजेंसी लगा देगा, जो मुझे अपने नजरिए से हटाए, मुझे कोई फिक्र नहीं है इस खुशी की। जो मेरा मौका पहले दिन था जो इमरान खान साहब का है, जो इमरान खान साहब का नजरिया है वो आज भी है, वो इसके बाद भी होगा। अपनी पॉलिसी बदलो, पॉलिसी शिफ्ट लाओ। हमारे फौजी जवानों को, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को, हमारे आम सिविलियंस को इसको मजीद जो है ये इस खून खराबे से बचाओ। इसमें पाकिस्तान की भी भलाई है, इसमें हम सबकी भलाई है।
2: गवर्नर राज जी धमकिन खां डिजण वारो नाया, कुर्सी खातिर पंजे नजरिए तां हथ न खणंदुसि। ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जे वॾे वज़ीर सोहेल आफरीदी चयो आहे त अवामी मैंडेट ख़िलाफ़ केर बि नथो वञी सघे। मूंखे को बि फिक्र नाहे, रियासत खे पंहिंजी पॉलिसी तब्दील करणु घुर्जे। PTI अॻवान सलमान अकरम राजा चयो त लांग मार्च मुल्तवी करे हुकूमत खे वक़्तु ॾिनो, पंहिंजनि फैसलनि ते नज़रसानी करे हुकूमत सां तय थींदड़ ॻाल्हियुनि ते अमल कयो वेंदो।
4: और ये आपकी जो मोहब्बत है अफगानिस्तान के साथ, आप करना होगा कि आप पाकिस्तान के साथ ही अफगानिस्तान।
2: PTI खे पाकिस्तान मां जी चूंड करणी पवंदी। अरबे ॿुधायो वञे त पैसा काॾे विया आहिनि। मुल्कती वज़ीर तलाल चौधरी जो चवण हो त ॿुधाए त संदन अफ़गान बाबति रवियो नरम छो आहे। सरहद पार थींदड़ हमलनि में 70% अफ़गान
5: असां आलाद करण लाइ आई जी सिंध खां अपील था कयूं, फिल फोर जेको आहे अजी साल खे आज़ाद कयो वञे।
6: अॼु असांखे धमकी मिली रहियो आहे, अॼु असांखे अगवा कयो पियो वञे।
7: असां बि जेको आहे मुआशिरे जो आवाज़ आहे, मज़लूम कॾहिं हुन जो को दाद फरियाद न थींदो आहे, किथे बि हुन जो सदारत न थींदो आहे।
8: इहो कानून आहे, अॻे कतल थींदा, मुख़्तलिफ़ मुतालबा कया वञनि था। हक़ सचु लिखण वारा साथी उन्हनि खे पंहिंजो सचु न वणियो, इन जे करे असांजे साथी बेबाक साहब खे अगवा कयो आहे।
9: जेको बेबाक साहब या अज़ीम साहब हुनखे फुल फोर आज़ाद, सिंध पुलिस किथे निंड में खुटो पियो आहे, फुल्फा चोड़ो थो पए, अगवा जी सख़्त मज़म्मत था कयूं।
2: KTN न्यूज़ कानपुर महल जे रिपोर्टर असीम सयाल जी अगवा खे ॿ ॾींहं थी विया। पुलिस मुगवी सहाफ़ीअ खे बाज़ियाब करण में मुकमल तौर ते नाकाम बणियल। पुलिस जी कार्रवाई बि ॻाल्हियुनि ताईं महदूद। अज़ीम सयाल जी बाज़ियाबी लाइ अमली क़दम न खयो। अज़ीम सयाल जी बाज़ियाबी लाइ कलम धड़ी सरापा एहतजाज बणियल। मुख़्तलिफ़ धरणा नौशरो फिरोज़, गमबट, उॿावड़ो, मीरपुर माथेलो, ठरी, मीरवा, चक, बख्शापुर ऐं बान सईदाबाद एहतजाज कयो वियो। जरवार, खैरपुर, दोदापुर, कुम, दड़ो ऐं तलहार में बि कलम धरणनि एहतजाज। खैर में वकीलनि बि एहतजाज करे अज़ीम सयाल जी बाज़ियाबी जो मुतालबो कयो।

0: एशिया न्यूज का सीनियर रिपोर्टर हुसैन के कच्चे में अगवा हो गया है सर, आप
1: मैं जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन को यह केस रेफर करेंगे, आप तफसीलात हमें फराहम करें, उसका भरपूर नोटिस है।
2: वफाक वजीर अता तारण के टी एन न्यूज के अजीम सियाल की अगवा जो नोटिस तारण चो है तो सहाफी अजीम सियाल की अगवा की मजम्मत क्यूं था, वाक़े बाबत तफसील दिना वन सहाफी की बाजियाबी लाइ घुर्बल कदम खड़ जरूरी।

अमरीकी सदर ईरान सां हिन हफ़्ते ॻाल्हियूं थियण जो इम्कान ज़ाहिर करे छॾियो। डोनाल्ड ट्रम्प जो चवणु आहे त उमेद आहे त अमरीका तर्फ़ां ॻाल्हियूं कंदड़ हलंदड़ हफ़्ते ईरान सां ॻाल्हियूं कंदा। अमरीका जंग खटी चुको आहे पर कार्रवाई मुकमल तौर ते ख़त्म न थियूं आहिनि। मिड टर्म चूंडनि खां अॻु ईरान ते हमिलो करे सघां थो। ईरान ख़िलाफ़ जंग जल्द ख़त्म थियण जी उमेद आहे। असांजो बुनियादी मक़सदु ईरान खे जौहरी हथियार ठाहिण खां रोकणु आहे। ईरान ख़िलाफ़ फ़ौजी ऐं मुआशी सतह ते कामयाबियूं मिली रहियूं आहिनि। ॻाटे टोड़ महांगाई सबबि माण्हुनि जो जीअण जंजाल थी वियो। लेवी ख़त्म करण खां सवाइ हुकूमत वटि ॿियो को बि रस्तो नाहे बचियो। जमात इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम चयो आहे त असां पुठिते न हटंदासीं। असां चाहियूं था त मसलो पुरअमन तरीक़े सां हल थी वञे। अवाम बिजली ऐं गैस जी लोडशेडिंग सबबि परेशान आहे।

हैदराबाद में वासा मुलाज़मन जो अड़नि महीननि खां पघारूं न मिलण ख़िलाफ़ एहतजाज कंहिं बि नोटिस न वरितो। हाज़िर सर्विस तोड़े रिटायर मुलाज़मन 87 ॾींहं बि एहतजाज कयो। मुलाज़मन हो त आफ़िसर हर महीने पघारूं खणी रहिया आहिनि, पर नंढनि मुलाज़मन सां जुठ कई पई वञे। पघारूं ऐं पेंशन अदा करे परेशानी ख़तम नौदेरो में कारा इल्ज़ाम हेठि क़तल करण जो इंकिशाफ़। केटी मुमताज़ थाणे ते मदद में केस दाख़िल, हिकु जवाबदार। केस में मौक़िफ़ ॼाणायो वियो त घर अंदरि गोली लॻण सबबि नाहिद ख़ातून जी मौत जो वाकियो साम्हूं आयो। पुलिस मूजिबि मुख्य जवाबदार राजा खखराणी खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवा के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे। जे करे तवा के भी बीमारी में मुब्तला आयो या बीमारी पुरानी थी वही आहे त उन बीमारी जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताई सुबह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाए राब्तो करियो 0306244770।

अवां सभिनी जे लाइ आहे ऐं उन माहौल खे एंजॉय कयो। ऐं अॼो के शो में यकीननि अॼु असां अवां सां खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं कंदासीं ऐं खोड़ सारियुनि ॻाल्हियुनि में हूंदा तव्हांजा मैसेज शामिल। त पोइ तव्हांखे लिखणो आहे पंहिंजी मोबाइल मां MTI स्पेस ॾेई पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखी पंहिंजो नालो लिखजो। 88 81 888 1 ते मैसेज ॾियारे मोकिलिजो। ऐं हा, ॿिए कलाक में यानी 6 खां 7 वॻे ताईं वारे कलाक में अव्हां जूं लाइव कॉल्स बि शामिल कंदासीं। प्रीतीअ रीत जे पंधनि ते पहिरीं हलूं था आवाज़ जे पासे जिते सैयद वज़ीर अली शाह जो मिठड़ो आवाज़ आहे। अचो त गॾिजी ॿुधो।

शामिल कंदा सी अमारे प्यारा प्यारा मैसेजेस वठ पुनु खान पंवर खान सा के रुस्तम अली पंवर बुधे पियो तमाम घणे मेहरबानी मोहब्बतु भलीकार आई कुंडरी खान चोवन कुमार कोहली डॉक्टर अनीता चौहान संगीता पारस बुधे पई अवाजु तमाम घणे मेहरबानी रोहड़ी सखर खां नजीर अहमद मंगरियो बुधे पियो आई अमल के शाम जे हसीन पैर में उत्तर जे थदड़ियन हवाओं में अवां जो मिठड़ो आवाज नमकीन आवाज मन के मोहे रखियो। अच्छा जी मोहब्बत तुझे भलीकार लखथोरा आई जनाब है वोट हाजी मास्क वड़ा वड़ा वहां जा जो वहां सा के बुधो पिया सी आई जनाब के गोठ जी जनाब गोठ है आलम खान जरवार उता का मोहम्मद अजीज जरवार मोहम्मद इदरीस जरवार याद कयो अमा जो तमाम घणी मेहरबानी अमा के चंदास वेलकम है भलीकार खुश जो आबाद जो तारन में चंडे खीर में कंध हो जो तमाम घणी मेहरबानी।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन बाइट

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
3: जीए FM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

वेलकम बैक मजे सामाइन, ही आहे GFM 88 रेडियो नेटवर्क। अवां जे पंज शो तमा बुधो पे सिंधड़ी जी शाम आई, अवां जो आरजे अवां साण आहे यूनिस बकारी, मोहब्बतुन भरिया सलाम। जी दोस्तों, मेहरबानो कदरदानो भेनरो ए भाईरो, जेकर अजो के शो में अवां शामिल थियण चाहियो था त हाणे ई मैसेज कयो, लिखो MTI स्पेस दियो, पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो, पंहिंजो नालो लिखो ऐं 888-188-81 जे मैसेज ॾियारे मोकिलजो। ॾिसंदासीं त अॼु असां सां गॾु केरु हूंदो। जी हा जनाब, असांखे ज्वाइन कयो आहे, मैसेज मोकिले असां साण शामिल थी चुका आहिनि, उन्हनि महिरबानी जा शामिल करे वठूं। मैसेज ॻोठ खबड़ भील खां असांखे रामचंद ॿुधे पियो, उदासी परवेज पाकिस्तानी ॿुधे पियो ऐं सुणो शावेज़ सुल्तान ॿुधे पियो। अवां जी तमामु घणी महिरबानी, भलीकार ऐं अवां असांजे शो में काफ़ी ॾींहनि खां पोइ शामिल।

अधिकारी रामचंद्र कुमार अमां जी तमाम घणी महिरबानी अमां के चवंदासीं वेलकम बेहतरीन शो तव्हां लिखियो थैंक यू तमाम घणी महिरबानी ऐं भली कार चवंदासीं ओके जनाब साज़ ऐं आवाज़ जे साथ में अमां जो मोहबत न भरे असां ही आहे GAFM 88 रेडियो नेटवर्क कोठा जी सुल्तान लुंड खां प्यारली लुंड ॿुधे पियो अवां जो बि तमामु घणी महिरबानी वॾा वॾ ऐं रोहड़ी खां मोहम्मद सुलेमान ऐं अब्दुल हमीद ऐं अब्दुल सतार शेख ॿुधनि था तमामु घणी महिरबानी अब्दुल रज़ाक हाले पुटु ॿुधे पियो किरोड़े कुर्ब ऐं वेलकम चवंदासीं तव्हांखे गुलाम हुसैन जलालाणी खां नाज़ फ़क़ीर मोहम्मद जलालाणी ॿुधे पियो अवां जो तमामु घणी महिरबानी नाज़ फ़क़ीर मोहम्मद जलालाणी साहिबु ऐं आरज़ू असलम जलालाणी अवां जा वॾा वॾा ख़ुशि

पिथौरा खां मोमिन शहर बुधे पियो। मोमिन शहर साहब तव्हां जो महिरबानी, पिथौरा खां असांखे ज्वाइन कयो आहे। किरण कुर्ब तव्हांजा थैंक यू ऐं भलीकार चवंदासीं तव्हांखे।

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
3: GA FM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

लाइव कॉल्स वठंदासीं 6 वॻे खां पोइ 6-7 जे विच में जेको टाइम हूंदो उहो लाइव कॉल जो हूंदो। झपियो डीपलो खां मोहम्मद सिद्दीक पाढ़ो ड्राइवर रोशन अली पाढ़ो ॿुधनि पिया। अव्हां जी बि तमामु घणी महिरबानी, वेलकम चवंदासीं। अव्हां खे भलीकार ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, सदाई सुखिया हुजो। थैंक यू। ऐं कश्मीर खां करमपुर खां असांखे जॉइन कयो नबी बख़्श उर्फ़ नबन बिजाराणी, तमामु घणी महिरबानी नबन बिजाराणी साहब।

खुश हुजो, आबाद हुजो, थैंक यू, वरी गार चवंदा थी। त पई साज़ ऐं आवाज़ जे साथ में हिकिड़ो ज़बरदस्त ट्रैक इन दौरान जेकॾहिं तव्हां लिखी वठंदा एम टी आई स्पेस पंहिंजे ॻोठ शहर जो नालो लिखी पंहिंजो नालो लिखंदा 8881 ते मैसेज मोकिलींदो त कंदासीं बिल्कुलु शामिल। पोइ इंतज़ार पिया कयूं अव्हांजे मैसेज जो। तेसीं ताईं आवाज़ ई दुनिया जो हिकिड़ो मैसेज, ज़बरदस्त ट्रैक नगमा नाज़ जो।

जी जनाब, कीअं पियो लॻे शो अॼु को सिंधड़ी जी शाम? यकीन उन खां पहिरीं जो असां न्यूज़ ब्रेक लाइ हलूं, असां हलंदासीं हिकिड़े ट्रैक जे थ्रू ऐं ज़बरदस्त आवाज़ ॿुधाईंदा तव्हांखे वठी हलंदासीं ख़बरुनि जे लाइ। सो त पोइ ॾिसूं था पहिरीं ट्रैक ॾांहुं वधूं।

ठीक टिनि मिंटनि खां पोइ ख़बरूं हूंदियूं ऐं ख़बरुनि खां पोइ कमर्शियल ब्रेक ऐं बिना ब्रेक वापसि ईंदासीं असां छहें वॻे खां पोइ पोइ लाइव कॉल्स जे लाइ नंबर ॾींदासीं हुन नंबर ते कजो कॉल अवां जूं कॉल्स शामिल कंदासीं छहें वॻे खां पोइ वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा मसाला फूल का है फूल किधर जाएगा।

जी जनाब रांझन सखर से सुन रहे हैं, कहते हैं आर ओ रांझन सखर प्लीज प्लीज सरबंत सिंधी बिल्कुल सरबंत सिंधी साहब सदा बुधी सी न्यूज ब्रेक का पे तपई मजे सा ट्रैक वी वो ब्रेक वी वो बाकी गाल बिना ब्रेक के कदासी छो तो प्रोग्राम है जारी हो सारी ब्रेक का पे आप यूनिस बकारी।

0: एंड चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
1: डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जोशो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज
3: जीए FM नेटवर्क
4: सिंध की आवाज
5: अब आप सुनेंगे जीए FM नेटवर्क पर KTN न्यूज आप सुन रहे थे
6: ये उसका हिसाब किताब आपको देना होगा जो आईनी खिलाफ वर्जी आपने किए और कर रहे हैं उसका हिसाब किताब आपको देना होगा जो आपने पहले से वही नौमाई और जो भी वाकयात किए उसका हिसाब किताब भी आपको देना होगा।
7: खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगंदो या वडो वजीर तब्दील थींदो वफाकी हुकूमत जो मुख्तलिफ़ ऑप्शन ते गौर वीचार कानून वारे वफाकी वजीर

0: नहीं चलेगा, ये मैं आपको कहता हूं। अपने पार्टी के अंदर भी नहीं चलेगा, उसकी स्ट्रीम शिप भी नहीं चलेगी, इसकी कोई अभी उसको बचा नहीं सकेगा। ये कहते हैं कि मैं और खतरनाक बन जाऊंगा। मैं आज इसको इस केपीके से और इस पेशावर से ये कहना चाहता हूं कि अफरीदी साहब आप तैयार रहे, जेल के अंदर होंगे, वही सलाखों के अंदर होंगे। जो लूट मार आपने किए उसका हिसाब किताब आपको देना होगा। जो आईनी खिलाफ वर्जी आपने किए और कर रहे हैं उसका हिसाब किताब आपको देना होगा। जो आपने पहले से वही नौमाई और जो भी वाकयात किए उसका हिसाब किताब भी आपको देना होगा।
1: खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगंदो या वडो वजीर तब्दील थींदो, वफाकी हुकूमत जो मुख्तलिफ़ ऑप्शन ते गौर वीचार। कानून वारे वफाकी वजीर फिक्र ना है, रियासत के पंजी पॉलिसी तब्दील करण घुर्जे। पीटीआई अगवान सलमान अकरम राजा चयो तो लॉन्ग मार्च मुलतवी करे हुकूमत के वक्त दिनो है, पांजन फैसलन ते नजरसानी कन, हुकूमत सा तय थींदड़ गालन ते अमल कयो वेंदो।
2: आपकी जो मोहब्बत है अफगानिस्तान के साथ, आपको अब यह फैसला करना होगा कि आप पाकिस्तान के साथ है या अफगानिस्तान के साथ है। इट्स एज क्लियर एज दैट।
1: पीटीआई के पाकिस्तान अफगानिस्तान में कहीं एक की चूंड करनी पौंदी। सोहेल आफरीदी इंतजामी तौर नाकाम थे बाद सियासी तौर पर नाकाम थी वो है। सतसमा वफाकी वजीर अता तार चयो तो सूबे अंदर तबाही थी चुकी है। वफाक खैबर पख्तूनख्वा के अरबे रूपया डिना, बुधाया वे तो पैसा काले वया। ममलकती वजीर तलाल चौधरी जो चवण हो तो केपी हुकूमत बुधाये तो संदन अफगानिस्तान बाबत रवियो नरम छो है। सरहद पार में 70% अफगानी शहरी मुलविस।
3: हालात करण आईजी सिंध का जो फिल फोर जो अची साल के हाथ थो वे
4: अज अस धमकी मिली रो अज अस अगवा पे
5: असाश मजरूर जैसे उन दाद फरियाद नदारत
6: नारियल कल्चर जो एक किलो भूंगो तलब करन था। यो काथो जो कानून आगे हाँ अगवा कर मुख्तलिफ मुतालबा क्या वन था।
7: हक सच लिखण वारा साहबी उनो सच न वणियो इन असाजे साहबी अगवा कयो।
8: बेपाक साहब या अजीम साहब उनकी फुल फोर आजाद सिंध पुलिस किथे निंड में सुटो पियो आहे, अफसोस सां चवणो थो पए। असां इन अगवा जी सख़्त ज़मत आहे कयो।
1: केटीएन न्यूज़ कानपुर में रिपोर्टर अज़ीम सियाल जी अगवा के ब डी थी वया, पुलिस मुगवी सहाफ़िया के बाज़ियाब करण में नाकाम। पुलिस की कार्रवाई बे गालिन ते महदूद, अज़ीम सियाल जी बाज़ियाबी लाइ अमली कदम न खयो। अज़ीम सियाल जी बाज़ियाबी लाइ कलम धरणी सरापा एहतजाज बणियल, मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा ऐं धरणा। घोटकी नौशरो फिरोज गंबा टोबावड़ो मीरपुर माथेलो ठरी मीरवा चकबान सईदाबाद में एहतजाज कयो वियो। जरवार खैरपुर दोदापुर कुमदड़ो ए तलार में भी कलम धड़न एहतजाज रिकॉर्ड करायो। सखर में वकीलन भी एहतजाज कर अज़ीम सियाल की बाज़ियाबी जो मुतालबो कयो। कलम धड़न पारा अज़ीम सियाल की बाज़ियाबी जो मुतालबो।
9: केटीएन न्यूज का सीनियर रिपोर्टर के कच्चे में अगवा हो गया है, सर आपने उस सवाल से
10: किया। मैं जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन को यह केस रेफर करेंगे, आप तफसीलात हमें फराहम करें, उसका भरपूर नोटिस है।
1: सुलतमा और वफाकी वजीर अताताड़ केटीएन न्यूज रिपोर्टर अज़ीम सियाल की अगवा जो नोटिस वरतो। अताताड़ चयो है तो सहाफी अज़ीम सियाल की अगवा की मजम्मत क्यों था, वाक़े बाबत तफसील लिना वन सहाफी की बाज़ियाबी लाइ घुर्बल कदम खड़ जरूरी है।

दुश्मन फौज के जल्द अरबी समुंड में नेकाली डिनी वी ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा अली खामनाई की समाजी वेबसाइट से जारी कल बयान में फौज दुश्मन के ईरानी समुंड में नेकाली डिनी है हाने अरबी समुंड में दुश्मन की नेकाली लाए ईरानी फौज जल्द वही कार्रवाई कंदी। अमरीकी सदर ईरान से इन हफ्ते गाल इम्कान जाहिर कर चवण है उम्मीद है अमरीका तरफा गाल हलंदड़ हफ्ते ईरान से गाल अमरीका जंग खटे चुको है पर कार्रवाई मुकम्मल तौर खत्म न थी मिडटर्म चूंड का अगे ईरान से हमलो कर तो ईरान खिलाफ जंग जल्द खत्म थियण की उम्मीद है असो बुनियादी मकसद ईरान के जोहरी हथियार ठाण का रोकण है ईरान खिलाफ फौजी ए मुआशी सतह से कामयाबी मिली रही है। चठे के मुख्तलिफ शहर में एसटीपी की सिंध मुंजी अमां की सिरे हेठ रैलियों डॉक्टर कादिर मक्सी ए बेन की शिरकत सिंध तरक्की पसंद पार्टी के सरबराह डॉक्टर कादिर मक्सी है सिंध की जाग्राफियाई हदन से हथ चरांद बर्दाश्त न कंदासी मुल्क से हाँ नवा तजुर्बा बंद थे घुर्जन। मीर रजा केस लाए जुडिशियल कमीशन के मुद्दे में वाद जो फैसलो न थी सको वडे वजीर मुराद अली शाह समरी से सही कर छी काबीना की मंजूरी रहल जुडिशियल कमीशन कार्रवाई 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर छी घरू खाते के नुमाइंदे कमीशन के आगाह कर पेरी 2 अक्टूबर से काबीना मंजूर वकील जिब्रान नासिर तो सुपर मेडिकल बोर्ड कें तसली लाए ठा पे वे डॉक्टर सुमैया समेत सभी डॉक्टर कूड़ लिखो है। बोरो में पुलिस पारा औरतों के अगवा कंदड़ गिरोह के गिरफ्तार कर बिन औरतों के बाजियाब करने की दावा पुलिस मूजिब दरगाहों तक औरतों के वर्गलाए अगवाबाद विक्रो कंदड़ गिरोह के गिरफ्तार किया है कार्रवाई दौरान मंजूर पांवर उर्स पांवर जायदा सईदा मर्दा ए सीमा के गिरफ्तार किया वो है बिन औरतों के बाजियाब कराया है। नए देरे में पढ़ल नारी के कारा इल्जाम हेठ कतल करण जो इंकशाफ केटी मुमताज थाने ते सरकार की मदद में केस दाखिल एक जवाबदार गिरफ्तार केस में मौकिफ जाना वो तो घर अंदर इतफाकी गोली लगन सबब नाहिद खातून की मौत जो वाक्य सामू आयो पुलिस मूजिब मुख्य जवाबदार राजा खखरानी के गिरफ्तार किया है।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवा के परेशान थे जी का भी जरूरत ना आहे। जे करे तवा कें भी बीमारी में मुब्तला आयो या बीमारी पुरानी थी वही आहे तो उन बीमारी जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताई सुबह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, एमसीबी बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाए राब्तो करियो 0306-244-7700।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
3: जीए एफएम नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज़।

0: असांजे आवाज़ जे साथ में असांखे कॉल आई चांडियू साहब जी, ऐं हाणे ॾिसंदासीं त असां सां गॾु केरु हूंदो। उन जे लाइ कॉल अटेंड कयूं था। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: केरु साहब ऐं किथां खां? पुनल हुसैन मेहर साहब, खुश आयो? ठीक आयो, चङा भला। मां तारा जोड़
1: अलाह जी शुक्र आहे प्यारा माण्हू, तव्हां ॿुधायो तबियत कीअं आहे मिठा माण्हू?
0: अलाह साईं जा अहसान आहिनि, तव्हांजी दुआ लॻी पई आहे। घोटकी जी मौसम कीअं?
1: प्यारा माण्हू, मौसम तमामु प्यारी आहे, तमामु प्यारी। तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधी दिलि ख़ुशि थी वेंदी आहे मुंहिंजा।
0: महिरबानी महिरबानी, लख थोरा लख थोरा साईं। अच्छा,
1: प्यारा कलाम हलाईंदा हुआ ज़बरदस्त, असांजा कलाम ॾाढा पसंदि ईंदा आहिनि तव्हांजा, जेका बि हलायो प्यारा माण्हू।
0: अच्छा, कोशिश कंदा आहियूं त कुझु पुराणा गाना बि हलायूं ताकी असांजे ॿुधंदड़ ख़ुशि थियनि।
1: जी ज़रूरत बि न हूंदी आहे, एॾा मिठा कलाम था पई।
0: हा अच्छा, अव्हां सां गॾु पुनल, पुनल प्यारा, तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे? तमामु घणियूं अव्हां जूं महिरबानियूं, मोहबतूं, तव्हां सभिनी खे वेलकम था चऊं। पुनल हुसैन मेहर साहब घोटकी खां असांखे जॉइन कयो। थैंक यू। ॾिसंदासीं कॉल ते असां सां गॾु केरु आहे। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: जी वालेकुम सलाम।
0: जी केरु साहब ऐं किथां खां?
2: जेकमाबाद खां ॻाल्हायां पियो, रहमत अली जकराणी।
0: छा हाल आहे रहमत अली जकराणी साहब, ख़ुशि आहियो? ठीकु आहियो?
2: बिल्कुलु, असां ख़ुशि आहियूं साईं, तव्हां ख़ुशि आहियो?
0: अलहमदुल्ला, तव्हांजी दुआ आहे, तव्हां ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो?
2: बिल्कुलु, मालिक जो शुक्र आहे भई।
0: अलाह करे आबाद हुजो, सदाई तारनि में चंड ऐं खीर में खंडु हुजो। अव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे साईं?
2: रस्तम पवार, नाज़ नंगर जमाली, पठान पटकी वारो, मुनीर सयाल।
0: तमामु घणी मोहबतूं तव्हांजे दोस्तनि जूं। जी जनाब, कॉल ते ॾिसंदासीं केरु आहे। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: साईं वालेकुम अस्सलाम।
0: साईं केरु साहब ऐं किथां खां?
3: साईं हुसैन बख्त सियाल, नवाबी संगत खां।
0: छा हाल आहे, ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो सियाल साहब?
3: अलहमदुल्ला साईं, बिल्कुलु आऊं ख़ुशि आहियां। अव्हां कीअं आहियो साईं? ख़ुशि आहियो, तबियत ते सही आहे
0: अलहमदुल्ला। तव्हांजी दुआ लॻी पई आहे, बिल्कुलु ठीक ठाक ऐं ख़ुशबाश आहियां।
3: माशाला अलाह साईं, तव्हांखे साईं अञा बहितर सिहत ॾींदो। ऐं अॼु मां ईअं सम्झो घणनि ॾींहं खां पोइ फर्स्ट टाइम वरी अव्हांजो प्रोग्राम मूं एफ एम 94 तां ॿुधो, ऐं ॾाढी दिलि ख़ुशि थी तव्हां जेका वापसी थई वरी। मुंहिंजे लाइ त अॼु पहिरियों ॾींहुं आहे, पोइ तव्हां लाइ कॾहिं खां शुरू थिया वरी प्रोग्राम लाइ, पर मूंखे ॾाढी अॼु ख़ुशी थी
0: साईं। मूंखे तमामु घणी ख़ुशी थी, ऐं तव्हां असांखे मेहरापुर जे नगरीअ मां ॿुधो पिया। सदाई सुखिया हुजो, थैंक यू, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। ऐं बिल्कुलु बिल्कुलु, काफ़ी वक़्तु थियो आहे, शो वरी शुरू थी वियो आहे। हर सूमर ऐं अंगारे ते शाम जो 5 वॻे खां 7 वॻे ताईं गॾु हूंदा आहियूं।
3: इनशाला सर, ऐं अॼु असांखे असां जीअं रेडियो ट्यून कयो त अव्हांजो मिठड़ो आवाज़ ॿुधोसीं, त टीप चयो त बेहद ख़ुशी थई त असांजो भाउ, असांजो दोस्त यूनिस साहब वरी वापसि आया आहिनि ऐं असां लाइ प्रोग्राम कनि पिया। ॾाढी ख़ुशी पई, असां वरी बि अव्हांखे दिलि जे गहरनि सां मोस्ट वेलकम चऊं था, त ऐं उमेद रखूं था सदाई अव्हां असां लाइ प्रोग्राम कंदा रहंदा।
0: महिरबानी साईं, किरोड़े कुर्ब तव्हांजा लख थोरा। दोस्तनि जा नाला खणणु चाहियो था?
3: साईं बसि आऊं जम्मू में पंहिंजी नवाज़ संगत वारनि खे सलाम ॾियां थो, ऐं मुंहिंजी प्यारी बि संगत आहे गुला जी संगत वारनि खे सलाम, अव्हांखे अव्हांजी पूरी टीम खे सलाम, ऐं अव्हांखे वरी मां दुआ ॾियां थो त अलाह साईं अव्हांखे हमेशह ख़ुशि ऐं आबाद रखे, ऐं सितारनि में चंड हुजो, जीअं अव्हां चयो खीर में खंड हुजो, ईअं
0: साईं। महिरबानी,
3: थैंक यू सर,
0: थैंक यू। जी जनाब, थैंक यू वेरी मच। यकीन साथ ऐं आवाज़ जे साथ में प्यार ऐं पंहिंजाइप जा रंग शामिल, ऐं रंगनि में अव्हां शामिल। अवी सभु असांजा ॿुधंदड़, असांजी कुल काइनात आहे। ॾिसंदासीं त हाणे असां गॾु कॉल ते केरु आहे। हलो, अस्सलाम वालेकुम। जी केरु साहब ऐं किथां खां?
4: रुस्तम अली पवार।
0: रुस्तम अली पंवर साहब खुश आयो ठीक आयो चंगा भला मतारा जोड़ अल्लाह पाक जा अनेक एहसान दुआऊं आइन अवां सा गड़ी भी केर से बुधे रुस्तम आमीन आमीन आमीन मेहरबानी साईं अवां सा गड़ी भी केर पे बुधे
4: असांजा दोस्त आहिनि ॿुधनि पिया रहमत अली जखराणी नाज़ नंगर खान जमाली दिलीप कुमार मेघवार चोहन कुमार कोली
0: जी जी
4: दोस्त ॿुधनि पिया सभिनी खे असांजे तरफ़ां सलाम
0: वालेकुम सलाम थैंक यू सर थैंक यू महिरबानी जी जनाब साज़ ऐं आवाज़ जे साथ में वरी बि ॾिसंदासीं त कॉल ते अगरि केरु आहे ऐं बल्कि कॉल ते ॾिसंदासीं केरु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम
5: जी सर वालेकुम असलाम
0: साईं केर साहब ऐं किथां खां
5: लुंड खां प्यार अली लुंड
0: प्यार अली लुंड साहब ख़ुशि आहियो ठीकु आहियो चङा भला मतारा जोड़
5: सभु ख़ैर अलहमदिल्ला मालिक जे करम सर मां ॿुधायो ख़ुशि आहियो ख़ैरियत सां आहियो
0: अलहमदिल्ला अवां जी दुआ लॻी पए तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे प्यार अली
5: जी सर सलाम ॾियण चाहींदासीं दोस्तनि खे दिलीप कुमार मेघवाल मलिक मोहम्मद बलोच रुस्तम पावर ऐं रामचंद कुमार मकवाण
0: तमाम घणी महिरबानी साईं लख थोरा जी जनाब साज़ ऐं आवाज़ जे साथ में हिकड़ी वधीक कॉल अटेंड कंदासीं ॾिसंदासीं केरु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम सबानाज़ ठीकु आहियो चङा भला आहियो शुक्र अलहमदिल्ला तव्हांजी दुआ लॻी पई आहे तव्हांखे शो कीअं थो लॻे तव्हां मुंहिंजा फैन आहियो मां तव्हांजो थोराइतो आहियां अलाह साईं ख़ुशि रखे तव्हांखे ख़ुशि हुजो आबाद हुजो प्रोग्राम जे हवाले सां ॿियो कुझु चवणु चाहींदा
6: तव्हांजो प्रोग्राम जबरदस्त हले बाक़ी आपी तबसुम लाइ या पोइ त इहे अचनि ऐं प्रोग्राम कनि असां उन्हनि खे मिस था करियूं
0: आपी तबसुम खे मिस था कयो जेकॾहिं तबसुम ई शो ॿुधंदी हूंदी त ज़रूरु तव्हांजे हवाले सां कॉल कंदी शो में शामिल थींदी ऐं ॿुधाईंदी तूं शो में कॾहिं ईंदी थैंक यू हा इनशाला इनशाला तव्हां जल्दी ॿुधी सघंदा त बसुनि खे तमामु घणी महिरबानी लख थोरा

0: हर पहर जिंदगी की लहर।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: बैंक इस्लामी लाया, पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
3: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंडीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
5: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
6: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
5: जीए एफएम नेटवर्क,
6: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
1: बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
3: GA FM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस तो किए न
2: खैर खैर तबेदा सर मेहरबानी मो तू ताने खैर तो खुश हो तो टीम खुश है
1: सही। हां हां अल्हम्दुलिल्लाह दुआ लगी पई है तहां पठान खान पटके वाले साहब है अवां जे दोस्तन जो दुआऊं हैं अवां सा कदी केर पे बुधे
2: हाला तो के शाद आबाद रखे हमेशा अवां सा कदी दोस्त आए ने शौकत के करनिया रहमत के करनिया बटे दोस्त ए फोटो कोसो निकु अलावा नूरा मंद जातानिया
1: जी
2: थोड़ा खान मरी जे का क्री कर बुदिन का कोर सलाम मोहब्बत
1: तमाम घणी मोहब्बत तवा जो तवा पहरी दफो कॉल कई सच पूछो दिल दाडी खुश थी
2: जी सर जी बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह मां कॉल कंदो रहो तो अल्लाह खैर कंदो सर
1: कुर्ब साईं
2: के बतायो सर
1: कुर्ब साईं खुश हो जो
2: मेहरबानी मोहब्बत मोहब्बत तेरा
1: मोहब्बत मोहब्बत जी जना पठान खान पटके वाले साहब जी कॉल लगी वही वाह वाह थी वही दिसंदासी हाने कॉल ते केरो असा वट बाकी है 9 मिनट चल लगी 51 मिनट थे 9 मिनटन जो बाकी साथ साज ए आवाज जो साथ यूनिस बकारी जे वणण जो साथ
3: साधु सरन सा खत्म थी वई अज लही वई इंतजारी
1: ओके जनाब कॉल दे रिसाली के रहे हेलो अस्सलाम वालेकुम
4: वालेकुम सलाम अदा
1: केर साहब है किथा का कुर्बान अली खास केली साहब खुश आयो ठीक आयो चंगा भला मतारा जोड़ बार बच्चा टंगड़े में हाँ अवां सां गॾु ॿियो केर पियो ॿुधे वालेकुम असलाम भला देर सां कॉल छो लॻी आहे तव्हांजी किथे गैर हाज़िर हुआ केॾा घुमण विया बहरहाल सॉरी था चऊं जेकर अहिड़ी ॻाल्हि थी वई त
4: बिल्कुलु 6 बजे न्यूज़ ब्रेक खां पोइ जेको बंदि आहे कलाक थियण वारो आहे
1: ओहो चलो चलो मां ॾिसां थो कोशिशि कयां थो त असांजी नशरियात तव्हां ताईं पहुचे नशरियात कावड़ न कर जल्दी जल्दी कुर्बान ख़ासि केली वटि पहुच ठीकु आहे नशरियात खे चई छॾियो आहे कुर्बान ख़ासि केली साहब हिन गाने में तव्हांखे कुझु चइजे थो ॿुधो वरी ॿुधो हाणे ॿुधो भला

0: जी तू थोरो ख्याल कंदो कर न के सा गाल कंदो कर कॉल ते रिसु दा केर हेलो अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम
0: केर साहब है किथा खा
1: मेर अली कलोड़ो कंडियारे खा
0: छा हाल है कलोड़ा साहब खुश आयो ठीक आयो चंगा भला
1: अल्हम्दुलिल्लाह दुआ है ता बुदायो
0: अल्हम्दुलिल्लाह वहां जी दुआ लगी पई है वहां से कड़ बियो केर पे बुदे
1: मुझो बाबा मामा अमीन कलोरो निसार कलोरो अफजल कलोरो जेके भाईर धनी बुदन दा उन जे सबने के सलाम छोड़े टाइम थोड़ो आ
0: किरोड़े कुर्ब मिठा मानो किरोड़े कुर्ब ता जा मोहबतूं मोहबतूं कलोड़ो साहब यकीनन वक्त जी नज़ाकत के समझे तो कॉल वधिक अटेंड करे था वटो निस्नासी कॉल ते के रहे हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम ओके जनाब कॉल ते आवाज दें पे अची इन जे करे कॉल ड्रॉप करनी पेजी वही मजबूरन।

0: आहे GFM 88 रेडियो नेटवर्क। अवां ॿुधो पिया मातली मीर प्रकाश मटियारी सकरंड मेहरापुर मोरो लड़काणू सखर GFM 88 रेडियो नेटवर्क जंहिंजो नारो आहे सिंध जो आवाज़। कॉल ते केरु हलो? अस्सलाम वालेकुम जी, केरु साहब ऐं किथां खां?
1: जेकबाबाद खां शौकत अली जखराणी ॻाल्हायां थो।
0: शौकत अली जखराणी साहब, ख़ुशि आहियो? ठीकु आहियो?
1: ख़ैर लॻो पियो, तव्हां ख़ुशि आहियो?
0: अलहमदुल्ला। तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे?
1: रुस्तम पावर आहे, फ़क़ीर मोहम्मद जलालाणी नंगर जमाली।
0: जी जी,
1: नज़ीर अहमद मंगरो। जेके दोस्तनि सभिनि खे सलाम।
0: वालेकुम असलाम, तमामु घणी महिरबानी लख थोरा जी, थैंक यू। ॾिसंदासीं त कॉल ते केरु आहे। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: हलो,
0: अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, छा हाल आहे सर?
0: शुक्र आहे। केरु साहब ऐं किथां खां? जी, छा हाल आहे चांडिया साहब? ख़ुशि आहियो? ठीकु आहियो? अलहमदुल्ला। तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे?
2: मुंहिंजो भाउ।
0: जी जी,
2: मुंहिंजो भाउ अरशद ख़ान चांडियो, मंजीत चांडियो।
0: महिरबानी महिरबानी मिठा माण्हू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच लख थोरा। टाइम घटि आहे मौज़ूस ख़वातीन हज़रात, थोरो थोरो टाइम वठी कॉल करे सघो था 0334352578 असांजो नंबर, ऐं हुन नंबर ते ॾिसंदासीं केरु हूंदो असां सां गॾु। हलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम असलाम, केरु साहब ऐं किथां खां? जी जी, अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे? जी जी, थैंक यू थैंक यू मिठा माण्हू, महिरबानी। ओके लाफ़ेस। जी जनाब, साज़ आवाज़ साथ में आख़िरी लम्हा छह जा। ॾिसंदासीं त कॉल ते केरु आहे। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम,
0: केरु साहब ऐं किथां खां?
3: समीर चाणी थो ॻाल्हायां, कीकर जे वाला भाउ।
0: जी, छा हाल आहे? ख़ुशि आहियो? ठीकु आहियो?
3: अलहमदुल्ला साईं, तव्हां ख़ुशि आहियो? ख़ैर आहे
0: अलहमदुल्ला। तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे?
3: मुंहिंजा दोस्त आहिनि कुझु, इम्तियाज़ चांडियो, इमरान चांडियो, अदनान चांडियो, ज़ुल्फ़िकार चांडियो ऐं बदर चांडियो।
0: महिरबानी महिरबानी लख तौरु।

0: मंदिर के बरक्स कोई भी नहीं जा सकता और ना कोई भी अफोर्ड कर सकता है। अगर कोई इस बात से मुझे डराता है कि वो यहां पर गवर्नर राज लगा देगा, इमरजेंसी लगा देगा, जो मुझे अपने नजरिए से हटा है, मुझे कोई फिक्र नहीं है इस किसी की। जो मेरा मौका तेरी दिन था जो इमरान खान साहब का है, जो इमरान खान साहब का नजरिया है वो आज भी है, वो इसके बाद भी होगा। अपनी पॉलिसी बदलो, पॉलिसी शिफ्ट लाओ, हमारे फौजी जवानों को, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को, हमारे आम सिविलियंस को इसको मजीद जो है ये इस खून खराबे से बचाओ। इसमें पाकिस्तान की भी भलाई है, इसमें हम सबकी भलाई है।
1: गवर्नर राज जी धमकियन खान रिजण वारो नाया कुर्सी खातिर पंजी नजरिए ता हथ न खणंदुस। केपी जे वडे वजीर सोहेल आफरीदी चयो आहे तवामी मैंडेट खिलाफ केर भी नथो वञी सघे, मुखे को भी फिक्र न आहे, रियासत के पंजी पॉलिसी तब्दील करण घुर्जे। पीटीआई अगवान सलमान अकरम राजा चयो आहे त लॉन्ग मार्च मुल्तवी करे हुकूमत के वक्त डिनो, पंजनि फैसलनि ते नज़रसानी करण ते अमल कयो वेंदो।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
4: खुशखबरी हाँ, अवा के परेशान थियण की का भी जरूरत न आ है। जेकर तवा कें भी बीमारी में मुब्तला आयो या बीमारी पुरानी थी वही आ, तो उन बीमारी जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर

लेक्चरार नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ए हस्पताल नवाबशाह मरीजन जो चेकअप इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन अवां बे एक दफो आजमाए दिसो चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद है क्लिनिक जो टाइम आई डी है हर छंछर का खमीस ताई सुबह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकला आहे एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक बदीन स्टॉप रोड पुरानी सब्जी मंडी एमसीबी बैंक जे सामू नया पुल हैदराबाद वधिक मालूमात जे लाए राब्तो करियो 0306244770

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मगर ये सुहेल अफरीदी नहीं चलेगा, ये मैं आपको कहता हूं, अपने पार्टी के अंदर भी नहीं चलेगा, उसकी लीडरशिप भी नहीं चलेगी, इसकी कोई अभी उसको बचा नहीं सकेगा। अरे जेल के अंदर होंगे, कोई सराफों के अंदर होंगे।
2: खैबर पख्तूनख्वा में तहजीब तब्दील थींदो या इमरजेंसी, वफाकी हुकूमत आख़िरी मरहले में दाख़िल। कानून वारे वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ चयो अमीर मुकाम चयो आहे त केपी में गवर्नर राज जूं घुर्जूं पूरियूं आहिनि। केपीअ में कंहिं बि वक़्तु कुझु बि थी सघे थो, गवर्नर राज जो ऑप्शन हले या न, पर वॾो वज़ीर सुहेल आफरीदी न हलंदो।
3: डेढ़ के बरस कोई भी नहीं जा सकता और ना कोई भी अफोर्ड कर सकता है। अगर कोई इस बात से मुझे डराता है कि वो यहां पर गवर्नर राज लगा देगा, इमरजेंसी लगा देगा, जो मुझे अपने नजरिए से बताए, मुझे कोई फिक्र नहीं है इस किसी की। जो मेरा मौका फेरी दिन था, जो इमरान खान साहब का है, जो इमरान खान साहब का नजरिया है वो आज भी है, वो इसके बाद भी होगा। अपनी पॉलिसी बदलो के खिलाफ हमारे फौजी जवान, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों, हमारे आम सिविलियंस को इस फोन खराबे से बचाओ। इसमें पाकिस्तान की भी बुलाई है, इसमें हम सबकी बुलाई है।
2: गवर्नर राज जी धमकियुनि खां डिॼण वारो न आहियां, कुर्सीअ ख़ातिर पंहिंजी नज़रिए तां कॾहिं बि हथ न खणंदुसि। केपी जे वॾे वज़ीर सुहेल आफरीदी चयो आहे त अवामी मैंडेट ख़िलाफ़ केर बि नथो वञी सघे, मूंखे को बि फिक्र न आहे, रियासत खे पंहिंजी पॉलिसी तब्दील करणु घुर्जे। पीटीआई अॻवान सलमान राजा चयो आहे त लांग मार्च मुल्तवी करे हुकूमत खे वक़्तु ॾिनो, पंहिंजनि फैसलनि ते नज़रसानी करे हुकूमत सां तय थींदड़ ॻाल्हियुनि ते अमल।
4: ये आपकी जो मोहब्बत है पाकिस्तान के साथ, आपको अब ये फैसला करना होगा कि आप पाकिस्तान के साथ
2: है। पीटीआई के पाकिस्तान अफगानिस्तान मां का एक जी चूंड करनी पवंदी। सुहेल आफरीदी इंतजामी तौर नाकाम थियण बाद सियासी तौर भी नाकाम थी वियो आहे। सुतसमा वारे वफाकी वज़ीर अता ताड़ चयो आहे त सूबे अंदर तबाही थी चुकी आहे, वफाक केपीअ खे अरबे रुपया ॾिना, ॿुधायो वञे त पैसा काॾे विया आहिनि। मुमलकती वज़ीर तलाल हुकूमत ॿुधाए त संदन अफ़गानिस्तान बाबति रवियो नरम छो आहे, सरहद पार थींदड़ हमलनि में 70% अफ़गानी मुलविस आहिनि। लांग मार्च बाबति पार्टीअ जी तयारी न हुई, जी तारीख़ तब्दील थियण सां पार्टी कमज़ोर थी आहे। केपी जे अॻूणे वॾे वज़ीर अली अमीन गंडापुर चयो आहे त सूबे में वॾे वज़ीर जी रिट न हुअण सबबि वज़ीर खे खंभियो पियो वञे। बानी जे चवण ते वॾे वज़ारत छॾी ॿीहर हुकुम मिलियो त ॿीहर थी सघां थो।
5: असां आलाद करण खां आहे बी सिंध खां अपील था कयूं, सिल्फ फोर जेको आहे अठी साल खे आज़ादु कयो वञे।
6: अॼु असांखे धमकी मिली रहियो आहे, अॼु असांखे अगवा कयो थो वञे।
7: असां बि जेको आहे मुआशिरे जो आवाज़ आहे, मज़लूम कॾहिं हुन जो को दाद फरियाद न थींदो आहे, किथे बि हुन जो सदारत न थींदो आहे।
8: नारियल कल्चर जेको आहे हिकिड़ो रुपयो भूंगो तलब करनि था, इहो किथो जो कानून आहे। अॻे कतक थींदा, हाणे अगवा करे मुख़्तलिफ़ मुतालबा कया वञनि था।
9: हक़ सच लिखण वारा साथी, उन्हनि खे पंहिंजो सच न वणियो, इन जे करे असांजे साथ बेपाक साहबीअ खे अगवा कयो आहे।
10: जेको बेपाक साहबी आहे अज़ीम ख़्याल, हुनजी फुल फोर आज़ाद सिंध पुलिस किथे निंड में सुठो पियो आहे, अफ़सोस सां चवणो थो पए। असां हिन अगवा जी सख़्त मज़म्मत था कयूं।
2: केटीआर जे रिपोर्टर अज़ीम ख़्याल जे अगवा खे 2 ॾींहं थी विया, पुलिस मुगवी साफ़ीअ खे बाज़ियाब कराइण में मुकमल तौर ते नाकाम बणियल। पुलिस ॻाल्हियुनि ताईं महदूद, अज़ीम ख़्याल जी बाज़ियाबी लाइ अमली कदम न खयो। बाज़ियाबी लाइ कलम धरणी सरापा एहतजाज, मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा ऐं धरणा। घोटकी, नौशेरो फिरोज़, गमबटो, बावड़ो, मीरपुर माथेरो, ठरी मीरवा, चक, बख्शापुर ऐं भान सईदाबाद में एहतजाज कयो वियो। जरवार, खैरपुर, दोदापुर, कुम, दड़ो ऐं तलार में कलम धरणनि पारां एहतजाज कयो वियो। सखर में वकीलनि बि एहतजाज करे अज़ीम सियाल जी बाज़ियाबी जो मुतालबो कयो वियो।

0: एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, रहो जीएफएम 91.6।
2: खुशखबरी। हाँ, अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं भी बीमारी में मुबतला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे, त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, एमसीबी बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।

0: जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खत्ते की बनी है आवाज,
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज, उसी

0: गीत जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी एफएम
1: जुड़ा है कल्पते की जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: सच जो आवाज ये हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज उधरदा रहो
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज़।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: जो कॉन्स्टिट्यूशन में मैकेनिज्म है वो जब रिक्वायर करेगा तो ये सारी चीजें,
2: मगर ये सुहेल अफरीदी नहीं चलेगा, ये मैं आपको कहता हूँ, अपने पार्टी के अंदर भी नहीं चलेगा, उसकी सीटशिप भी नहीं चलेगी, इसकी कोई अभी उसको बचा नहीं सकेगा। आप तैयार है, जेल के अंदर होंगे, कोई सराफों के अंदर होंगे।
3: केपी में वजीर तब्दील थींदो या इमरजेंसी लगंदी, वफाकी हुकूमत जी मुशावरत आखिरी मरहले में दाखिल। कानून वारे वजीर सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ चयो आहे त केपीअ में इमरजेंसी लगण घुर्जे ऐं लगंदी बि। आइन में घुर्बल ज़रूरतूं पूरियूं हूंदियूं त सभु कुझु थींदो, इमरजेंसी बाबति आइन वाज़े आहे। वफाकी वज़ीर अमीर मुक़ाम जो चवणु हो त केपी में गवर्नर राज जूं घुर्जूं पूरियूं आहिनि, केपी में कंहिं बि वक़्तु कुझु बि थी सघे थो, गवर्नर राज जो ऑप्शन हले या न, पर वॾो वज़ीर सुहेल आफरीदी न हलंदो।
4: देर के बाद स्कूल भी नहीं जा सकता और ना कोई ये अफोर्ड कर सकता है। अगर कोई इस बात से मुझे डराता है कि वो यहां पर गवर्नर राज लगा देगा, इमरजेंसी लगा देगा, जो मुझे अपने नजरिए से हटाए, मुझे कोई फिक्र नहीं है इस किस्ती की। जो मेरा मौका फेरी दिन था, जो इमरान खान साहब का है, जो इमरान खान साहब का नजरिया है, वो आज भी है, कल होगा। अपनी पॉलिसी बदलो, पॉलिसी शिफ्ट लाओ, हमारे फौजी जवानों को, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को, हमारे आम सिविलियंस को, इसको मजीद जो है ये इस खून खराबे से बचाओ। इसमें पाकिस्तान की भी गलती है, इसमें हम सब की गलती है।
3: गवर्नर राज धमकियन का डिजण वारो न आया, कुर्सी खातिर पंजे नजरिए ता हथ न खणंदुस। केपी जे वडे वजीर सुहेल आफरीदी चयो आहे त अवामी मैंडेट खिलाफ केर भी नथो वञी सघे, मूंखे को भी फिक्र न आहे, रियासत के पंजी पॉलिसी तब्दील करण घुर्जे। पीटीआई अगवान सलमान अकरम राजा चयो आहे त लॉन्ग मार्च मुलतवी करे हुकूमत के वक्त डिनो, पंजन फैसलन ते नजरसानी करे हुकूमत सां

0: थींदड़ ॻाल्हियुनि ते अमल कयो वेंदो।
1: ये आपकी जो मोहब्बत है अफगानिस्तान के साथ, आपको अब ये फैसला करना होगा कि आप पाकिस्तान के साथ है या अफगानिस्तान के साथ है। इट्स क्लियर एज दैट।
0: पीटीआई के पाकिस्तान ऐं अफगानिस्तान मां कंहिं हिक जी चूंड करणी पवंदी। सोहेल आफरीदी इंतज़ामी तौर नाकाम थियण बाद सियासी तौर बि नाकाम थी वियो आहे। सुतसमा वफ़ाकी वज़ीर अता ताड़ चयो आहे त सूबे अंदरि तबाही थी चुकी। वफ़ाक के पीअ खे अरबे रुपया ॾिना। ॿुधायो वञे त पैसा काॾे विया आहिनि। ममलिकती वज़ीर तलाल चौधरी जो चवणु आहे त केपी हुकूमत ॿुधाए त संदन अफ़गानिस्तान बाबति रवियो नरम छो आहे। सरहद पार थींदड़ हमलनि में 70% अफ़गानी मुलविस आहिनि। लांग मार्च बाबति पार्टीअ जी तयारी न हुई। लांग मार्च जी तारीख़ तब्दील थियण सां पार्टी कमज़ोर थी आहे। केपी जे अॻूणे वॾे वज़ीर अली अमीन गंडापुर चयो आहे त सूबे में वॾे वज़ीर जी रिट न हुअण सबबि वज़ीरनि मेंबर्स ऐं कारकुननि खे खंभियो पियो वञे। बानी जे चवण ते वॾो वज़ारत छॾी, ॿीहर हुकुम मिलियो त ॿीहर वॾो वज़ीर थी सघां थो। तहरीक तहफ़ुज़ आइन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे 4 अक्टूबर ते एहतजाज वारे सॾ जी हिमायत करे छॾी। तर्जुमान अखुंदज़ादा हुसैन चयो आहे त तहरीक इंसाफ़ अपोज़ीशन इतिहाद जो हिसो आहे। तहरीक तहफ़ुज़ आइन पाकिस्तान पारां 4 अक्टूबर वारे एहतजाज में भरपूर शिरकत कई वेंदी। 27 सेप्टेम्बर वारे सॾ खे सरबराही इजलास में अपोज़ीशन इतिहाद जो गॾियल सॾु करार ॾिनो वियो हो। कोहर खे वाज़े ॿुधायो हो त ही वक़्तु ॿीहर न ईंदो। 27 सेप्टेम्बर खां पाकिस्तान जे जमहूरी मुस्तक़बिल दस
2: असां अलाउ बिल्कुलु ख़्याल कया था धमकी में मुआशिरे जॾहिं को दाद फरियाद न थींदो आहे, किथे बि हुन जो सदारत न थींदो आहे।
0: केपी में वॾो वज़ीर तब्दील थींदो या इमरजेंसी लॻंदी। वफ़ाक़ी हुकूमत जी मुशावरत आख़िरी मरहले में दाख़िल। कानून वारे वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर ताड़ चयो आहे त केपीअ में इमरजेंसी लॻण घुर्जे ऐं लॻंदी बि। आइन में घुर्बल ज़रूरतूं पूरियूं हूंदियूं त सभु कुझु थींदो। इमरजेंसी बाबति आइन वाज़े आहे। वफ़ाक़ी वज़ीर अमीर मुक़ाम जो चवण हो त केपी में गवर्नर राज जूं घुर्जूं पूरियूं आहिनि। केपी में कंहिं बि वक़्तु कुझु बि थी सघे थो। गवर्नर राज जो ऑप्शन हले या न, पर वॾो वज़ीर सोहेल आफरीदी न हलंदो।
3: डेढ़ के बरस कोई भी नहीं जा सकता और ना कोई ये अफोर्ड कर सकता। अगर कोई इस बात से मुझे डराता है कि वो यहां पर गवर्नर राज लगा देगा, इमरजेंसी लगा देगा, जो मुझे अपने नजरिए से हटाए, मुझे कोई फिक्र नहीं है इस किसी की। जो मेरा मौका पहले दिन था जो इमरान खान साहब का है, जो इमरान खान साहब का नजरिया है वो आज भी है, वो इसके बाद भी होगा। अपनी पॉलिसी बदलो, पॉलिसी शिफ्ट लाओ। हमारे फौजी जवानों को, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को, हमारे आम सिविलियंस को इसको मजीद जो है ये इस खून खराबे से बचाओ। इसमें पाकिस्तान की भी बुलाई है, इसमें हम सब की बुलाई है।
0: गवर्नर राज धमकियुनि खां डिॼण वारो न आहियां। कुर्सीअ ख़ातिर पंहिंजे नज़रिये तां हथ न खणंदुसि। केपी जे वॾे वज़ीर सोहेल आफरीदी चयो आहे त अवामी मैंडेट ख़िलाफ़ केर बि नथो वञी सघे। मूंखे को बि फिक्र न आहे। रियासत खे पंहिंजी पॉलिसी तब्दील करणु घुर्जे। पीटीआई अॻवान सलमान अकरम राजा चयो आहे त लांग मार्च मुल्तवी करे हुकूमत खे वक़्तु ॾिनो। पंहिंजनि फ़ैसलनि ते नज़रसानी करे हुकूमत सां तय थींदड़ ॻाल्हियुनि ते अमल कयो वेंदो।
1: ये आपकी जो मोहब्बत है अफगानिस्तान के साथ, आपको अब ये फैसला करना होगा कि आप पाकिस्तान के साथ है या अफगानिस्तान के साथ है। इट्स क्लियर एज दैट।
0: पीटीआई के पाकिस्तान ऐं अफगानिस्तान मां कंहिं हिक जी चूंड करणी पवंदी। सोहेल आफरीदी इंतज़ामी तौर नाकाम थियण बाद सियासी तौर बि नाकाम थी वियो आहे। सुतसमा वफ़ाकी वज़ीर अता ताड़ चयो आहे त सूबे अंदरि तबाही थी चुकी। वफ़ाक के पीअ खे अरबे रुपया ॾिना। ॿुधायो वञे त पैसा काॾे विया आहिनि। ममलिकती वज़ीर तलाल चौधरी जो चवणु आहे त केपी हुकूमत ॿुधाए त संदन अफ़गानिस्तान बाबति

0: रवियो नरम छो आहे। सरहद पार थींदड़ हमलनि में 70% अफ़गानी मुलविस आहिनि। लॉन्ग मार्च बाबति पार्टीअ जी तयारी न हुई। लॉन्ग मार्च जी तारीख़ तब्दील थियण सां पार्टी कमज़ोर थी आहे। केपी जे अॻूणे वॾे वज़ीर अली अमीन गंडापुर चयो आहे त सूबे में वॾे वज़ीर जी रिट न हुअण सबबि वज़ीरनि, मेंबर्स ऐं कारकुननि खे खंभे पियो वञे। बानी जे चवण ते वॾे वज़ारत छॾी, ॿीहर हुकुम मिलियो त ॿीहर वॾो वज़ीर थी सघां थो। तहरीक तहफ़ुज़ आईने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे 4 अक्टूबर ते एहतजाज वारी सॾ जी हिमायत करे छॾी। तर्जुमान अखुंदज़ादा हुसैन चयो आहे त तहरीक इंसाफ़ अपोज़ीशन इतिहाद जो हिसो आहे। तहरीक तहफ़ुज़ आईने पाकिस्तान पारां 4 अक्टूबर वारे एहतजाज में भरपूर शिरकत कई वेंदी। 27 सेप्टेम्बर वारे सॾ खे सरबराही इजलास में अपोज़ीशन इतिहाद जो गॾियल सॾु करार ॾिनो वियो हो। बैरिस्टर गोहर खे वाज़े ॿुधायो हो त हीउ वक़्तु ॿीहर न ईंदो। 27 सेप्टेम्बर खां हिकु हिकु ॾींहुं अहम आहे। हीउ वक़्तु पाकिस्तान जे जमहूरी मुस्तक़बिल ऐं आईन जी बालादस्तीअ लाइ इंतिहाई अहम आहे।
1: असां आलात करण लाइ आई जी सिंध खां अपील था कयूं, फिल फोर जेको आहे अची साल खे आज़ाद थो वञे।
2: अॼु असांखे धमकी मिली रहियो आहे, अॼु असांखे अगवा पियो थो वञे।
3: असां बि जेको आहे मुआशिरे जो आवाज़ आहे। मज़लूम जॾहिं हुन जो को दाद फरियाद न थींदो आहे, किथे बि हुनजो सदारत न थींदो आहे।
0: जी फायरिंग में पुलिस जो एसआई अज़मत उल्लाह समेत 3 अहलकार शहीद थिया। घरू वज़ीर मोहसिन नकवी पारां 3 पुलिस अहलकारनि जी शहादत ते ॾुख जो इज़हार। दहशतगर्दनि जे ख़ात्मे वारे अज़म जो वर्चाओ। ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ सिक्योरिटी फोर्सेज़ जूं कार्रवायूं जारी। डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी फोर्सेज़ जो चवण आहे त फोर्सेज़ दहशतगर्दनि जे चुरपुर ते नज़र रखी कामयाबी सां निशानो बणायो। मारिजी वियल दहशतगर्दनि जे कब्ज़े मां हथियार, बारूदी मवाद ऐं करंसी हथ कई वई। छठे जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में एसटीपी जी सिंध मुंहिंजी अमां जी सिरे हेठि रैलियूं, डॉक्टर क़ादिर मक़्सी ऐं ॿियनि जी शिरकत। सिंध तरक़ी पसंद पार्टी जे सरबराह डॉक्टर क़ादिर मक़्सी चयो त सिंध जी जाग्राफियाई हदुनि सां हथ चुरांद बर्दाश्त न कंदासीं। सिंध असेंबली जे ठहराउ खां पोइ हिकु वज़ीर जो दिमाग़ अञा वधीक ख़राब थी वियो आहे। इहो तय आहे त नवां सूबा कंहिं बि सूरत में क़बूल न आहिनि। मुल्क ते हाणे नवां तजुर्बा बंदि थियण घुर्जनि। मीर रज़ा केस लाइ जुडिशियल कमीशन जे मुदे में वाद जो फ़ैसिलो न थी सघियो। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह समरीअ ते सही करे छॾी। काबीना जी मंज़ूरी रहियल, जुडिशियल कमीशन कार्रवाई 2 अक्टूबर ताईं मुलतवी करे छॾी। घरू खाते जे नुमाइंदे कमीशन खे आगाह कयो त 1 अक्टूबर ते काबीना मंज़ूरी ॾींदी। वकील जिब्रान नासिर चयो आहे त सुपर मेडिकल बोर्ड कंहिंजी तसलीअ लाइ ठाहियो पियो वञे। 6 डॉक्टर सुमैया समेत सभिनी डॉक्टर स्कूल लिखियो आहे। हैदराबाद रेलवे स्टेशन वियो। पिशावर खां कराची वेंदड़ अवामी एक्सप्रेस जो हिकु गाॾियो पटड़ीअ तां लथो। रेलवे अख़्तियारनि जो चवण आहे त प्लेटफॉर्म ते लॻण दौरान रेलगाॾीअ जो 16 नंबर गाॾो लही वियो। हादसे सबबि रेलवे ट्रेक मुतासिर न आहे थियो। ॿियनि रेलगाॾियुनि जी अचवञ जारी आहे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: खुशखबरी। हाणे अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुबतला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे, त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बि हिकु दफ़ो आज़माए ॾिसो।

0: चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद है। क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 बजे का शाम 5 बजे ताई जुमो मोकल है। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक बदीन स्टॉप रोड पुरानी सब्जी मंडी MCB बैंक जे सामू नया पुल हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाए राब्तो करियो 0306244777।
1: DBSN DBSM 5 सालन जो प्रोफेशनल प्रोग्राम डॉक्टर ऑफ

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

जीअं फितरत वञा शाहिदा मां सिंधुअ जा सुभागा किनारा सॾनि था निगाहूं सॾनि थियूं नज़ारा सॾनि था घणी देर खां प्यार प्यारा सॾनि था।

दोस्तों वक्त थियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो, ब्रेक खां पोइ वरी वरंदासीं, ॿुधंदा रहो जीए एफ एम नेटवर्क।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा हो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: KTN न्यूज खानपुर महाराज रिपोर्टर अजीम सियाल के अगवा के बदी थी वह पुलिस मुगवी सहाफिया के बाजियाब कराण में मुकम्मल तौर से नाकाम बनल। पुलिस की कार्रवाई भी रुगो गाल महदूद। अजीम सियाल की बाजियाबी लाए अमली कदम न खो। अजीम सियाल की बाजियाबी लाए कलम धड़ी सरापा एहतजाज, मुख्तलिफ शहर में मुजाहरा धरना। घोटकी नौशर फिरोज गंबट उबावड़ो मीरपुर माथेलो ठरी मीरवा चक बख्शापुर भान सैदाबाद में एहतजाज कर जरवार खैरपुर दोदापुर कुम दड़ो ए तलार में भी कलम दड़न जो एहतजाज। सखर में वकीलन भी एहतजाज कर अजीम सियाल की बाजियाबी जो मुतालबो कयो।
4: KTN न्यूज का सीनियर रिपोर्टर हसन के कच्चे में अगवा हो गया है, सर आपने उस सवाल से
5: की। मैं जनरल प्रोटेक्शन कमीशन के लिए केस रेफर करेंगे, आप तफसीलात हमें फराहम करें, उसका भरपूर नोटिस है।
3: तारण KTN न्यूज के रिपोर्टर अजीम सियाल की अगवा जो नोटिस वरतो। अता तारण सहाफी अजीम सियाल की अगवा की मजम्मत क्यों था, वाक्य बाबत तफसील दिना वन सहाफी की जी...

0: mais diferente da Avenida Paulista.
1: मगर इस सुहेल अफरीदी नहीं चलेगा, ये मैं आपको कहता हूँ, अपने पार्टी के अंदर भी नहीं चलेगा, उसकी शिप भी नहीं चलेगी, इसकी कोई अभी उसको बचा नहीं सकेगा। आप तैयार रहे, जेल के अंदर होंगे, इस तरह अपन के अंदर होंगे।
2: खैबर पख्तूनख्वा में वडो वजीर तब्दील थींदो या ही वफ़ाक़ी मरहम कानून वाले वजीर सेनेटर आज़म नज़र के पी लॻणु घुर्जे, सब आइन वाज़े आहे। वफ़ाक़ी वज़ीर अमीर मक़ाम चयो आहे त के पीअ में गवर्नर राज जूं घुर्जूं पूरियूं आहिनि, के पी में कंहिं बि वक़्त कुझु बि थी सघे थो। गवर्नर राज
3: अगर कोई इस बात से मुझे डराता है कि वो रिहाज लगा देगा, इमरजेंसी लगा देगा, जो मुझे अपने नजरिए से हटा है, जबकि मेरा मौका फेरी दिन था इमरान खान साहब का है, इमरान खान साहब का नजरिया है, वो आज भी है, वो इसके बाद भी होगा। अपनी पॉलिसी बदलो, पॉलिसी शिफ्ट लाओ, हमारे फौजी जवानों को, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को, हमारे आम सिविलियंस को, इसको मजीद जो है ये इस खून खराबे से बचाओ। इसमें पाकिस्तान की भी गई है, इसमें हम सब की भी गई है।
2: गवर्नर राज जी धमकियुनि खां डिॼण वारो न आहियां, कुर्सीअ ख़ातिर पंहिंजी नज़रिए सां हथ न खणंदुसि। के पी जे वॾे वज़ीर सुहेल आफरीदी चयो आहे त अवामी मैंडेट ख़िलाफ़ केर बि नथो वञी सघे, मूंखे को बि फिक्र न आहे, रियासत खे पंहिंजी पॉलिसी तब्दील करणु घुर्जे। पीटीआई अॻवान सलमान अकरम राजा चयो आहे त लांग मार्च मुल्तवी करे हुकूमत खे वक़्तु ॾिनो आहे पंहिंजनि फैसलनि ते नज़रसानी करे, हुकूमत सां तय थींदड़ ॻाल्हियुनि ते

0: का ये बिंदु।
1: और ये आपकी जो मोहब्बत है अफगानिस्तान के साथ, आपको अब ये फैसला करना होगा कि आप पाकिस्तान के साथ है या अफगानिस्तान के साथ है। इट्स एज क्लियर एज दैट।
0: पीटीआई के पाकिस्तान अफगानिस्तान में कहीं कजी चूंड करनी पौंदी। सोहेल आफरीदी इंतजामी तौर नाकाम थियण बाद सियासी तौर भी नाकाम थी वयो। सुस्तमा वफाकी वजीर अता तारण चयो तो सूबे अंदर तबाही थी चुकी है। वफाक के पी के 90 रुपया डिना बुधाये वे तो पैसा काडे वया। ममलकती वजीर तलाल चौधरी जो चवण हो तो के पी हुकूमत बुधाये तो संदन अफगानिस्तान सरहद पार थींदड़ हमलन में 70% अफगानी मुलविस। लॉन्ग मार्च बाबत पार्टी की तैयारी न हुई। लॉन्ग मार्च की तारीख तब्दील थियण से पार्टी कमजोर थी है। खैबर पख्तूनख्वा के अगूने वे वजीर अली अमीन गंडापुर चयो है तो सूबे में वे वजीर की रिट न होने सबब वजीरन मेंबर्स ए कारकुनन के खंभियो पे वे बानी के चवण से वड वजारत छी बीहर हुक्म मिलो तो बीहर वो वजीर थी सका तो। तहरीके तहफुज आईने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के 4 अक्टूबर से रिथल एहतजाज वरी सदे की हिमायत कर छी। तर्जुमान अखुंदादा हुसैन चयो तो तहरीके इंसाफ अपोजिशन इतिहाद जो हिस्सो है। तहरीके तहफुज आईने पाकिस्तान पारा 4 अक्टूबर वरी एहतजाज में भरपूर शिरकत की वेंदी। 27 सेप्टेम्बर वे सद के सरबराही इजलास में अपोजिशन इतिहाद जो गडियल सद करार डिनो वो हो। बैरिस्टर गोहर के वाजे बुधायो हो तो ही वक्त बीहर न ईन्द। 27 सेप्टेम्बर का एक डी अहम है। ये वक्त पाकिस्तान के जमहूरी मुस्तकबिल आईन की बालादस्ती लाए इंतहाई अहम है। दुश्मन फौज के जल्द अरबी समुंड में नेकाली डी वेंदी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा अली खामनाई समाजी वेबसाइट से
2: एफएम नेटवर्क पर केटीएन आप सुन रहे थे। जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
4: खुशखबरी हाँ अवां के परेशान थियण की का भी जरूरत ना आहे। जे करे तवां कें भी बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुरानी थी वई आहे तो उन बीमारी जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह। मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताई सुबह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, एमसीबी बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाए राब्तो करियो 0306-244-7700।
5: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
6: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
5: जीए एफएम नेटवर्क,
6: सिंध की आवाज़।